0: 신명 크리스천 상만이 기정 고프나 수하 아리아 기정 박사 소나 우체만이 기정 고가 맞다니 수모 원하는 분이 하 어디 득상이 잡으노 델리 유니 비빗 파티 프로그램 고 크나 소겐 얀 아카시바니 투라
1: पद्मिनी कोल्हापुर ने जी।
2: लेकिन इसके क्या होता वहां प्रोडक्शन कंट्रोलर्स आते थे जो गाने के पूरी डिटेल्स मतलब लिरिक्स के साथ शूटिंग के लिए वो नागरा क्या बोलते हैं ना नागरा वो लेकर आते
1: जी,
2: थे।
1: जी, जी।
2: तो वहां एक गलती प्रोडक्शन वालों की ये हुई कि उन्होंने जैकेट मतलब उस गाने में मेरा नाम नहीं दिया
1: अच्छा
2: जिसको लेकर नासिर साहब ने खुद मुझे फोन किया मंदाकिनी जी
1: नासिर हुसैन
2: जी कि मैं बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे
1: अरे
2: पर अब सब कुछ चला गया है अब वो टाइटल्स सब कुछ हो गया
1: हाँ
2: क्या
1: हाँ
2: नहीं मैंने कहा अंकल आप प्लीज ऐसा मत कहिए मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि एक तो मैं आपके प्रोडक्शन में गा रही हूँ और मैं लता जी के साथ गा रही हूँ
1: सबसे बड़ी
2: वही
1: बात
2: मेरे लिए काफी।
1: जी।
2: इतनी दुआएं दी उन्होंने बोला मैं तुझे फिर गवाऊंगा मैं तुझे गवाता रहूंगा फिर ये तो यादों की बारात वो गाना बजाए
1: यादों की
2: यादों
1: बारात
2: की
1: निकली
2: बारात
1: है आप
2: निकली है
1: पर
2: आज
1: आपको गाना होगा शर्त यही है
2: प्लीज मैं कोशिश करूंगी।

0: सपनों के शहनाई बीते दिन। देखिए मैं जो कह रही हूँ ना, फेड इन फेड आउट पुश बैक
1: जी
0: पुश बैक,
1: जी
0: वो इनके ये स्टाइल मैंने पंचम दास से
1: जी
0: सी।
1: जी
0: आप समझे,
1: वो खुद भी बखूबी गा
0: रा
1: रहे
0: हाँ
1: हैं
0: बिल्कुल
1: जी।
0: बारा।

0: बात कर रहे हैं हम आपके बचपन की,
1: जी
0: और अब सुषमा श्रेष्ठ के उस आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां हम कहना चाहेंगे कि कुछ गाने ऐसे थे जैसे कि क्या हुआ तेरा वादा,
1: हो
0: तेरी है जमी तेरा आसमान, और सबसे बड़ी बात
1: धर्म
0: एहसान की
1: करम,
0: फिल्म
1: धर्म करम भी था,
0: धर्म
1: एक दिन
0: करम
1: दिख जाएगा माटी के मोल,
0: बिल्कुल,
1: मुकेश अंकल के साथ।
0: और एन चंद्रा की फिल्म अंकुश का

0: देना दादा, जिसमें आपने पुष्पा पागधरे के साथ
1: जी,
0: गाया है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये गीत बड़ा भावनात्मक गीत था उस उम्र में,
1: बहुत।
0: वो भावनात्मक दृष्टिकोण कैसे आपके भीतर आया? इस गीत को गाना आसान नहीं था।
1: मंदाकिनी जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही वैसी थी। देखिए ना, मैंने पहला गाना जो उठाया गाने के लिए बचपन में भी, वो था रोतड़ू गाना, कांटों की दुनिया है तुझसे। फिर मैं गाती थी एक तू ना, ये मेरा मेरा चॉइस रहा है। सिर्फ मैं ना वर्ड्स का गड़बड़ करती थी, तो एक तू ना मिला को मैं चूना मिला बोलती।
0: अच्छा।
1: और डैडी बहुत हंसते थे और बार बार गवाते थे और करेक्ट नहीं करते थे कि उसको चूना मिला बोलने दो। तो चॉइस मेरा यही रहा है। ये अलग बात है कि आगे चल के मुझे अलग स्टाइल के गाने गवाए गए, वो एक अपनी कहानी है, लेकिन चॉइस तो मेरा यही रहा है। तो वो जो एक मैं बोलूंगी कि भाव से गाना जिसे कहते हैं, प्लेबैक सिंगिंग जिसे हम कहते हैं, हम माफी चाहूंगी सारे दिग्गजों से, मैं माफी चाहूंगी,
0: जी
1: लेकिन प्लेबैक सिंगिंग एक बहुत ही अलग गेम है।
0: विधा है।
1: बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कोई भी इसे ठीक तरह से विस्तार में समझा पाएगा कि ये क्या है, लेकिन प्लेबैक सिंगर्स जो है ना, वो खास एक ढांचे में वो उनको ढाल के भेजता है, ऐसा मेरा मानना है। तो वो मेरे में, मुझे लगता है बचपन से था
0: जी।
1: प्लेबैक सिंगिंग। तो ये सब गाने भी जब मैंने गाए, जैसे एक दिन बिक जाएगा माटी के, मैं ठीक समझ जाती थी कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि वो गाना भी पंचमदा ने जबरदस्ती मुझे गवाया है। राज साहब की फिल्म बन रही है तो आर के बैनर में इसका एक गाना होना ही चाहिए। राज साहब प्लीज, आप तो आप ही की फिल्म में एक एक सिचुएशन बनाओ। फिर तेरा मुझसे है पहले का उनको सुनाया, देखिए क्या गाती है क्या गाती है, कर दो ना कर दो ना, अच्छा अच्छा ठीक है। ऐसे करके उन्होंने वो सिचुएशन बनाई, मुकेश अंकल के साथ मुझे गवाया। तो मुझे ठीक मालूम था कि उनको वो तरमपम कैसे चाहिए, तरमपम। उसमें राज साहब ने कहा भी मुकेश अंकल को,
0: जी
1: ए मुकेश चंद, वो बच्चा बोल रहा है वैसा तरमपम नहीं आ रहा तुम्हारा।
0: अरे
1: पर उनकी उनका बड़प्पन देखिए।
0: हाँ।
1: पहले भी एक बार मैं मुकेश, झट से बताती हूँ।
0: हाँ।
1: मुकेश अंकल के साथ मैंने जो पहला गाना गाया वो बाप्पी दा की पहली फिल्म थी
0: जी,
1: नन्हा शिकारी।
0: अच्छा।
1: हाँ। ये मुखर्जी ब्रदर्स के, ने काजोल के चाचा पिताजी, काजोल के पिताजी उसके डायरेक्टर थे। तो बाप्पी दा की पहली फिल्म थी और उसमें जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो बाप्पी दा की मम्मी ने मुकेश अंकल से कहा कि तुम ना ऊपर के सुर को, क्योंकि उसका अंतरा था, चाहे मुझे धार में नहीं आ, उसको तुम ज्यादा मत खींचो, तोड़ दो नहीं तो तुम बेसुरा हो जाता है, ऐसे बोली वो। अब सब साइलेंस कि अब तो गदा पड़ी, लेकिन मुकेश अंकल की बढ़ाई देखिए, बड़प्पन उनका देखिए। वो बाजा बजा कर गाते थे, इवन रिकॉर्डिंग्स। वो हंसने लगे और बोले ठीक कह रही आप।
0: अरे
1: बड़प्पन देखिए
0: क्या बात है।
1: वहां मैंने ये एक और
0: बहुत
1: नोट करती थी ये सब बातें,
0: ये नम्रता भी नहीं,
1: ये नम्रता होना, अपनी कमजोरी को समझना, जानना और एक्सेप्ट करना, उसके लिए भी बहुत हिम्मत लगती है।
0: और एक बच्चे के सामने जब गाना जा रहा हो उसको अप्रिशिएट करते हुए,
1: और वही बात इस गाने में भी हुई कि मुकेश वो तरमपम बच्चे की तरह तो हंसने लगे, बोले अरे बच्चा तू तो हमेशा फंसाती है मुझे।
0: अरे
1: राज, बच्चा तरमपम बोलेगा और मैं बोलूं, इसमें फर्क तो होगा। अरे फिर भी मुकेश चंद देख वो के, अच्छा बता बेटा कैसे बोल रही है, तरमपम तरमपम, नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा राज, उसी से बोलो, उसी से बुलवाओ,
0: क्या
1: नहीं तुम्हारे अंतर में तुम बोलोगे, चलो ठीक है मुकेश चंद बोल दो जैसे बोल रहे हो। तो ये जो मैंने सब देखा, ये माहौल, एक वो जो कॉमरेडशिप, एक एक्सेप्टेंस,
0: बिल्कुल
1: कि नहीं मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूंगा, जो मैं नहीं कर सकता वो मैं नहीं करूंगा,
0: इसको इसको स्वीकार कर लेना,
1: ये ईमानदारी
0: जी
1: है ना
0: जी,
1: ये सब मैंने सीखा मंदाकिनी जी।
0: जी, जी
1: वो अगर चाहे तो थोड़ा सा गाना प्लीज बजा दीजिए
0: जी,
1: क्यों, मैं समझती हूँ हर हर कलाकार के लिए ये वो है,
0: फिल्म धर्म कर्म का
1: वो जो अंतरा है कि
0: हाँ।
1: ना हो बस में तेरे कुछ भी माना,

0: कहते हैं बिक
1: क्या
0: जाएगा,
1: बात है,
0: एक दिन बिक जाएगा
1: माटी
0: माटी
1: के
0: के मुंह, ये
1: मुंह।
0: हर कलाकार के लिए है। अगर आप बजा सकें तो प्लीज
1: हर
0: मेरे
1: एक
0: लिए ये
1: को
0: वाला
1: बिल्कुल ये
0: बजाइए।
1: गाना हम बजाएंगे और हमारे
0: जी
1: श्रोता सुनना भी चाहेंगे। तो चलिए सुनते हैं
0: जी
1: ये गीत।
0: ओ

0: इस गीत को सुनने के बाद तो देखिए रोंगटे खड़े से हो गए हैं, और हर वक्त जब इस गीत को हम सुनते हैं तो वाकई जीवन की सच्चाई हमें
1: बहुत
0: समझ
1: ठीक
0: आती है कि किस तरह से जीवन को जीना
1: जी
0: चाहिए। तो हम बात कर रहे थे एन चंद्रा की फिल्म
1: जी
0: अंकुश
1: जी
0: की,
1: जी
0: इतनी शक्ति हमें देना
1: जी
0: चाहता, ये
1: जी
0: आपका शायद अंतिम गाना था।
1: सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाया हुआ मेरा अंतिम गीत था।
0: जी जी
1: और क्या होता था मंदाकिनी जी, मैं अगर

0: प्रपोज किया, मैं भी को मैं उनको पापा जी कहती हूँ, और लिखा है उसको अभिलाष जी ने। फिर बहुत बदकिस्मत, इतने बेहतरीन राइटर लिरिसिस्ट एन चंद्रा जी की शायद पहली फिल्म, पता नंदा किनी जी, मैं अगर मैं बोलूं आपको, मैं बहुतों के लिए बहुत लकी हूँ। देखिए मैंने सबकी जो करियर्स की जो शुरुआत हुई है, काफी जैसे रमेश सिप्पी जी, सलीम जावेद जी, और फिर एन चंद्रा
1: उनके
0: जी
1: शुरुआती दौर
0: है,
1: में।
0: काजोल और रानी मुखर्जी, तो हाँ मैं लकी हूँ सबके लिए शायद। यस यस
1: इसमें तो
0: यस
1: आप हमारे लिए लकी
0: तो ये हमने सोचा ही नहीं था
1: जी।
0: कि ये गाना एक दिन इस देश, मैं बोलती हूँ देश विदेश में तो पॉपुलर हुआ, पर इस देश का एक नेशनल एंथम बन जाएगा,
1: बिल्कुल।
0: है ना। आज देखिए मतलब क्या, किस स्तर पे वो गाना पहुंच
1: बिल्कुल
0: गया,
1: बिल्कुल। और
0: इतना।
1: पुष्पा जी जैसी गायिका, जो कि बहुत ही जहीन एक गायिका है, उनके साथ गाना
0: मैं
1: आपको मिला।
0: बिल्कुल, और मैं मुझे पता ही नहीं कि पापा जी ने उनको क्यों चुना इस, पर मैंने जब फिल्म देखी तो वो उस कैरेक्टर के साथ जो उनकी आवाज,
1: वो वही थी
0: ये उन लोगों की ग्रेटनेस
1: जी, वो
0: थी
1: पुष्पा जी की ही
0: कि
1: आवाज हो सकती थी।
0: मुझे जब ये सवाल करते हैं, वो आप कीजिएगा जरूर, कि तब के संगीत और अब के में क्या फर्क,
1: जी मेरा ही
0: कीजिएगा
1: सवाल
0: जरूर,
1: है,
0: तब मैं आपको
1: जी
0: बताऊंगी
1: मेरा ही
0: कि
1: सवाल
0: क्या
1: है।
0: फर्क है। बस वो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मतलब कितने लोग फोन करके कहते हैं कि किसी बैंक के मैनेजर ने मुझे कॉल किया, वहां कोई हमारा एक सिंगर गया था, स्टेज पे गाता है बच्चा, तो वो गाना बज रहा था, और सब, वो जब गया तो सब बिल्कुल खड़े होकर विनम्र तरीके से
1: खड़े हो गए
0: बस वो गाना
1: जी जी
0: वो बंद हुआ, फिर सब बैठ गए, चलो अब काम। तो वो बोला पता है ये मेरी दीदी ने, दीदी ने, तो बोले हाँ सुषमा, अरे वही पूर्णिमा दीदी, उन्होंने गाया है। तो मैनेजर ने मुझसे बात किया और बोली कि आपके गाने से हम दिन की शुरुआत करते
1: करते
0: हैं,
1: हैं
0: हम कितने भाग्यशाली हैं, आप प्लीज आइएगा हमारे
1: जी
0: बैंक में, सिर्फ
1: जी
0: आइएगा,
1: जी
0: तो हम सोचे, हमको ऐसा लगेगा कि हमने बहुत कुछ पा
1: जी
0: लिया। मैंने सुना है स्कूल्स में गाती हैं, इवन बच्चों के शायद सिलेबस में, शायद मैंने सुना है, मुझे पता नहीं
1: और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब आकाशवाणी की
0: जी
1: दुनिया में
0: जी
1: हम कई बार, जब हमें देशभक्ति गीत बजाने होते हैं या
0: जी
1: मोटिवेशनल सॉन्ग बजाने होते हैं,
0: जी
1: तो ये गाना नंबर वन पर होता है।
0: देखिए
1: मतलब हर आकाशवाणी से ये गाना बजा है, हर आकाशवाणी से। और विविध भारती में भी कितनी बार इस गाने को
0: है
1: हरिण
0: ना,
1: घोषक ने बजाया है।
0: और अफसोस कि जिन लोगों ने, जो जुड़े हैं इस गाने के साथ, पापा जी, कुलदीप सिंह जी, अभिलाष जी, तो बेचारे उनका तो निधन हो गया, उनको वो कैसे कहूँ, वो
1: हाँ, वो
0: पहचान,
1: स्थान
0: वो स्थान नहीं मिला जिसके वो काबिल हैं,
1: बिल्कुल।
0: जिसके वो हकदार हैं।
1: कुलदीप सिंह जी के तो म्यूजिक की अगर हम बात करने चले तो एक लंबा समय निकल जाएगा।
0: कितने गुणी,
1: बहुत
0: बाप रे,
1: बहुत बिल्कुल।
0: तो
1: तो चलिए
0: इतने
1: ये गीत हम सुनते
0: गुणी,
1: हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो देखिए, इस गीत को सुनने के बाद हम भी वैसे ही हो गए जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि ये गीत हमें कितनी गहराई की ओर ले जाता है ना। तो पूर्णिमा जी, हम आपसे आज बातचीत कर रहे हैं बचपन से अभी तक का जो आपका सफर है गायिका बनने का, उस विषय पर। और ये बातचीत तो हमारी बहुत ही रोचक और शानदार हो रही है, हमारे श्रोता भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे यकीनन। लेकिन सुषमा से पूर्णिमा आप कैसे बनी, ये जो सफर है ये भी हम जानना चाहते हैं कि सुषमा से पूर्णिमा बनने तक का ये सफर कैसा रहा। तो चलिए, ये बातचीत हम करेंगे अब अगले अंक में। जॉम्बी टॉकीज, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। अभी आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा भाग। ये बातचीत यही खत्म नहीं हुई, इसका तीसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में
1: यान आकाशवाणी चुआ नसीमांग जेलियों ने अतः कपा विविध पार्टी प्रोग्राम को खना स्वाहा दौड़ दिख समय जब मनो नसीमांग मंदिर आको मना खरागपा इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्हीं छांग रचासा खोला चिचत कपा मन की बात बागीसकनी खत्ता को आगन गिसकनी खत्ता को असुनी मंदिर रंगना आगन प्रकानी को खना सोना मंगेन यान आकाशवाणी चुरा।

0: आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है।

0: जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध न हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
1: The best of entertainment, information, education, अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड बेस्ट OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शब्द कीर्तन, आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन से योजना के 3 गारंटेड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें। फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई,
0: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
0: तो क्या करूँ?
3: कॉल करो फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
0: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स में पहले एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: कॉलेज की यादें छोड़ो, कितनी बातें भूल गया। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है। बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
5: कहाँ से पता चलेगा?
4: इनकम से। आरटीआई के इनकम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
5: आज ही सर्च करूंगा।
4: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 144116 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
7: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
8: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक

मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्यवाही की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था, उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में पीएम बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोड़ी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है sec.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की यह तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंह जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी,

उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी IIT BHU से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं, मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढेरा मंदिर विध्वंस के भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए, जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हो, तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवरता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तुओं और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना, उसका एक अर्थ ये भी होता है प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है बल्कि गुजरात का यह गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाए और भारत की इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पाराई में

ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का यह एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है, कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं, जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहां फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था, तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहेजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही है। झाड़खाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही है। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला।

सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहजे, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माय भारत के वॉलंटियर शामिल है, एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वो 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे, 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांव में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांव में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने आचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश

0: हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही है। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही है। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित न रहे, विदेश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती है। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई है। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा, घर घर मुनगा यह अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खान पान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। ये मिजो समाज के तलो मडियाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए, वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहाँ भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिका नेत के रूप में की जाती है। और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यही से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहाँ आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहाँ हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। यह यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 144.16 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: नरसिंहा मंदिर आक्रमण खागपा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्हीं छावने चासा कोला चीजत कपा मन की बात बागी सकने खाता को असुनी मंदिर आउना आवन प्रकातानी को खना सुना मना हा तो आप सन को नाच कुछी पेस खावानास खागवा को जोल जो नरसिंहा खना सुना मन गयन।
4: अंगनी का सरा आसुंगो सुंदोंग परंग नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर सेना के सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते

0: उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा।
1: आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
0: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकाले। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
2: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन को उन्होंने जो दिशा और ऊर्जा दी, अयोध्या में भव्य मंदिर उसी का निर्माण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया था।

0: सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवरता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
1: प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की जयंती का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता बापू द्वारा दिए गए जीवन के कई मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
0: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल

0: साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यान आकाशवाणी चुरा समय दो चिकनी बाजी में पोंग आहा या समय दाल सानी दोंग को एक बार प्रोग्राम और दाल थामने थाई सोगुन प्रोग्राम रंग को समय रंग बक्सा सुसु यातांगेंगा चिकनी बाजी में चिकनो एंड्री सांगमा आरुनी दो आरु वेबसर मोमन आरुनी दो नी सोनो मेथेलानी गिजन को कनासोगेन चिकनी कोलाचियो डेलियोनी विविध पार्टी प्रोग्राम एसएमएस के बहाने वीबीएस के थवाने चिगनी सुतपुंगा बुंगा विविध पार्टी जरोखा सा बजो विविध पार्टी हिट सुपर हिट सा खोलाच्यो विविध पार्टी मन चाहिगित गनी बजो सानी इंग्लिश खबर गनी चिबुंगा हिंदी खबर गनी बजी मिट खोलाच्यो विविध पार्टी कथम बजो हिंदी खबर कथम बुंगा बजो इंग्लिश खबर और गतम चुकंग बाजियो ने गतम को ग्रुप वहां बाजियो ना न्यू इंडिया समाचार को खनासोगेन ये रवान दाल सालनी दुंको एक बार प्रोग्राम रंग वा दाल जो जो अथम ना थाई सोगुन प्रोग्राम रंग को सुमय रंग बक्सा सुसु व्यतांगे गा दोक बाजियो व्यतानी सुमय दोक बाजी मित पोंग आओ शिदवानी उतात के पाच खबर दोक ची पोंग आओ सिक्स्टोन मारा आओ नी जोल नी सोना उमचलन की जंको खनासोगेन दोक कोलाचियो एपिन मारा आओ नी जोल आओ मिक Christon Sangma Aruni Dolni Solak Matelan Gijanko Knasogen Dok Sutpongo Dingtang Dingtang Manderangni Bajan Koknasogen Sni Baji Toki House Program Sni Kolachio Vivid Party Chet Bajio Indiani Prime Minister Narendra Modi Uni Chang Chasa Kolachi Chet Kpa Man Ki Ba Ba Gisigni Kaptako Asongi Manderangna Achkuchi Peska Aranat Kagabako Nasimang Knasogen Chet Kolachio Kalsusani Kobora Chat Sutpibunga Hindi Kobor, Sku Bajo English Kobor, Sku Chibunga Bajo Spotlight Program, Sku Kolachio Vivid Party, Chikung Bajo Hindi Kobor, Chikung Baji Mit Bongo English Kobor, or Chikung Baji Minit Chikungoni, Chikung Kolachio Na Vivid Party Program Ko Knasogen. Yangan Dara Tamna Tari Sogumen Program Rangwa, Dautubiksani Jamuno Chigini Baji Minit Chikung Ahan Mungapan Program Ko Knasogen. Yan Akashwani Tura.
2: Mesik bebol nak nyara dunia ni ongja. Yang janggi tangani abacanya ni bakung wa.
3: Na sanitary napkins, biodegradable pad, tampons, bawa nak kejakat utai nama gebarang ko basi gencimu ba. Rong thalan thalan ni ko deh nang telaya. Bebol nak nyau jakala ni rangko kontha bri ba dok prako seng jana getta bodol jungbo. Aru rakpa sabon bas melata ni rang nipal. Si ko sa jakal skabo.
2: Bebol nak nyau jakal gebarang ko bodol naskang aru zaman pangnan jaksu jungbo. Mesik bebol nak nyau chi salni nak nyau rangko dondekat nabe. Bebol nak nyau tengok jakala ni rangko agat cair abat bo. Ka dong gupong bo aru casun sekarang ko yani bidungu Rachagizan agan china didibo.
4: Bakram manichi dak chakra kappa, aro dungto kappa biyapko sakan china ngwat naman gen. Da alo ni mechik biwal na kanina rasong chagabongbo, anchang yako naljoke, rongthale aro rasong chay rakhina.
2: Yako jan mani namgenina, National Health Mission Department of Health and Family Welfare, Government of Meghalaya uyate nga.

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है, वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इंसिपी को, उसका पहल में वो लेख छपा था कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना उत्तम सिंह की और फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

0: جشن بالبهنتي في 26 جوهرة 3 أكتوبر بالبهنتي بان آرها هيتا
1: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार हैं कतील शिफाई, संगीत है उत्तम जगदीश का और फिल्म का नाम है पेंटर बाबू।

0: संगीत साधक ओरे पथिकुआ मत जइयो तू मेरा भोलो। उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: घनश्याम राम शिव नाम सुमिरो दिनहा।
0: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सदुख खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह पर 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है सॉन्ग।
4: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उदित नारायण की आवाज में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है मदन मोहन का और फिल्म का नाम है वीर जारा।

Okay.

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों मैं हूँ आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आई हूँ कार्यक्रम सुविधा सफल। तो बढ़ाई अपनी रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, नौ पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि इस प्रोग्राम में हम एक टेक्स्ट यानी इबारत पोस्ट करते हैं और उनमें से आपको शब्द ढूंढने होते हैं और गाने चुनने होते हैं और साथ में आपकी अपनी टिप्पणियां साझा करनी होती है और श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणी आ रही है। तो एक बार इबारत हम दोहरा देते हैं जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज पर नहीं पहुंचे हैं। कभी कभी दिल में ख्याल आता है, क्या जरा सा झूम ले, जरा सा घूम ले। कहाँ घूमे? वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। नहीं नहीं, वहाँ चले जहाँ मिलता है सुकून। कहाँ? जहाँ तुम कहो। ये कहाँ आ गए हम और फिर तुम कहो। चलो सजना जहाँ तक घटा चले फिर ऐसी वादियों में चलेंगे जहाँ पहाड़ बादलों से बातें करते हो और कोई धीमी सी नदी हमारे साथ साथ चलती हो। कहाँ कहीं रुकेंगे? हाँ, जहाँ नदी का पानी इतना साफ हो कि उसमें आसमान भी अपना चेहरा देखे और अगर शाम हो गई तो चांदनी को साथ लेकर किसी पहाड़ी रास्ते पर निकल पड़ेंगे। इतना घूमना किसके नाम? पर्यटन के नाम? या ये सफर तो बस दिल के नाम है। और अगर रास्ते में कोई पूछे कहाँ जा रहे हो तो मुस्कुरा कर कहेंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाले उस दुनिया की तलाश में जहाँ सफर भी कहानी हो और मंजिल भी। फिल्मी हो गए हो आज तो क्या करें, यश जी की फिल्मों ने ही तो सिखाया है कि पहाड़ों के बीच भी मोहब्बत की एक पूरी कहानी बस सकती है। तो फिर अगला पड़ाव जहाँ तुम हो वहीं से सफर शुरू। तो चलो तुम, हम और ये वादियां कुदरत के खूबसूरत नजारों के बीच।

लेकिन वादा करो नदी के पानी को साफ सुथरा रखेंगे। एक कागज की कश्ती कराएंगे और खुद भी एक कश्ती में बैठ चलेंगे नदी के उस पार, जहाँ ऊंचे पर्वत के दायरे होंगे। दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि आज के शब्द कौन से हैं और गाने कौन से हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप गाने सुझाते रहिए और वो गाने हम अपने प्लेलिस्ट में डालते रहें और आप तक पहुंचाते रहें। वैसे आज की जो इबारत है उसमें एक एक शब्द पर एक एक गाना है, तो ढूंढिए वो गाने भी, जरा गाने भी तो लिख डालिए। आपने पर्यटन के बारे में लिखा है, घूमने के बारे में, वादियों के बारे में, ये तो लिखते रहना है, लेकिन गानों के बारे में भी लिखना है। अब जरा बूझिए कि पहला वाला गाना कौन सा हो सकता है। अब आपने तो बूझ ही लिया है, बहुत सारे श्रोताओं ने लिख भी डाला है कि आज यश चोपड़ा का जन्मदिन है, तो लगता है आज की इबारत में यश को याद किया जाएगा। और एक शायद आप भूल रहे हैं, आज तो महेंद्र कपूर की याद का दिन भी है और आज ये पर्यटन दिवस है, नदी के दिन को याद किया जा रहा है, तो भाई बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए इन मिली जुली बातों के साथ हम सफर पर चलते हैं, सुरीला सफर। तो बताइए कौन सा वाला गाना होगा और इस गाने में कौन है कलाकार, हीरो हीरोइन का नाम बूझिए फटाफट। फिल्म कभी कभी, गाना कौन सा, पहचान लिया कि नहीं? लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, गीतकार कौन?

कभी-कभी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें साहिर लुधियानवी के बोल और राखी और शशि कपूर हीरो वो हीरोइन श्रोताओं ने ये जवाब भी दिया है सही। और बहुत सारे श्रोताओं ने गानों के बोल लिखे हैं, ये पर्वतों के दायरे, ये कहाँ आ गए हम, नाव कागज की गहराई पाने, जिंदगी का सफर, तुम साथ हो तो हंसी, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, वादा करो नहीं छोड़ेंगे तेरा साथ, अच्छा तो हम चलते हैं, तुम भी चलो हम भी चले, सुहाना सफर और ये मौसम सी, ये पर्वतों के दायरे और अनगिनत गानों के बोल लिख रहे हैं श्रोता। हम इनमें से जिनकी जिन मतलब जिन गानों की संख्या ज्यादा होगी वो गाना हम आपको सुनाते चलेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि यश चोपड़ा जी बी आर चोपड़ा के छोटे भाई थे, उन्होंने अपने भाई बी आर के साथ फिल्म निर्देशक का काम शुरू किया, तो जरा अब हमें बताइए कि यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। सवाल दोहरा देते हैं, ये पहली है आपको पूछनी है, यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। सन हमने बता दिया है, आपको फिल्म का नाम पूछना है। एक श्रोता लिख रहे हैं तेरे नैना तलाश करें, और एक श्रोता ने लिखा है कि आज विश्व पर्यटन दिवस है, तो आज की इबारत के जरिए आपने बेहद सरल सफर की झांकी कर दी। कहते हैं जब सफर का साथी हमारे मनोभावों को समझता है तब जगह चाहे कोई भी हो सफर सुहाना ही हो जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय सिनेमा में अगर किसी एक नाम को भव्यता, दिलकश नजारों और निश्चल प्रेम का पर्याय माना जाता है तो वो है यश चोपड़ा। उन्हें हिंदी सिनेमा का किंग ऑफ रोमांस यूं ही नहीं कहा जाता, और खूबसूरत वादियां, खूबसूरत कुदरत के नजारे उनकी फिल्मों में देखने को मिलते हैं, और आज पर्यटन दिवस है और नदी दिवस भी है, तो ये सारे नजारे हम उनकी फिल्मों की आंखों से देखते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति हमें जीवन भर देती रहती है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करें, सिर्फ उसे निहारे नहीं बल्कि उसका संरक्षण करें, यही प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम और कृतज्ञता होगी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि यश चोपड़ा की फिल्मों ने भले ही प्रकृति की गोद में रोमांस को प्राथमिकता दी हो, आत्मा के उत्थान के लिए, मानसिक शांति के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए ये प्रकृति हमें सदैव प्रेरित करती है। जहाँ प्रकृति मुस्कुराती है, खिलखिलाती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत अच्छा है गीत जो शुरुआत की आपने, और एक ने लिखा है कि क्लासिक शुरुआत, और एक श्रोता ने लिखा जरा सा झूम लूं मैं, अच्छा तो हम चलते हैं, ये कहाँ आ गए हम, चलो सजना, बड़ी लंबी फेहरिस्त लिखी है इन्होंने, और भी बहुत सारे श्रोता लिखते जा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही हैं हमें, नैसर्गिक सुंदरता से भरी गीत सुनने को बुला रही है विविध भारती हमें, बोरीवली मुंबई सागर किनारे दिल ये पुकारे, विविध भारती तू जो नहीं तो हमारा कोई नहीं, विश्व पर्यटन दिवस पर रेडियो सखी के संग सभी मित्रों का बोरीवली मुंबई समंदर किनारे सुरीला सफर में स्वागत है। स्वागत आप सभी का पूरे देश के श्रोताओं के लिए, और जो देश से बाहर विदेश में सुन रहे हैं ये प्रोग्राम उनका भी स्वागत। अब हम पहली दोहरा देते हैं, यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। और हाँ, क्योंकि पर्यटन दिवस की बातें भी चल रही हैं तो आप अपनी यादें भी साझा करते चलिए, और हमें ये भी बताइए कि अब से लेकर प्रोग्राम के आखिर तक इन बातों के जवाब आप दे सकते हैं कि आपके जहन में सबसे खूबसूरत वादी घाटी कौन सी है जो आपने देखी हो। अब जरा बूझिए कि यही गाना आपने सोचा था या कोई और, हीरो हीरोइन का नाम भी बूझिएगा और गीतकार का नाम, संगीतकार का नाम भी बूझिएगा।

वक्त फिल्म का गाना था आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें थी। गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे रवि। और हमने जो सवाल आपसे पूछा था, यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, चांदनी। और अभी जो सवाल था, वक्त फिल्म में कौन हीरो हीरोइन है, गीतकार संगीतकार का नाम भी सही बताओ, सुनील दत्त साधना। हमने इधर पूछा उधर श्रोताओं के जवाब आने शुरू हो गए थे। एक श्रोता ने लिखा है कि 2 सप्ताह पहले ही मैं और रेखा कश्मीर की वादियों से भोपाल से लौटे हैं। आज के गाने उन्हीं वादियों में बिताए पलों को याद करा देंगे। डल झील में नौका विहार, पहलगाम की वादियों में झरझर झरने बहते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे प्रकृति ने अपना सारा संगीत और सौंदर्य यही लाकर एकत्रित कर दिया हो। तो भी आप सभी जो सुन रहे हैं, अगर कहीं घूमने गए हैं किसी पर्यटन स्थल पर, तो वहाँ की यादें साझा कीजिए और वहाँ के अनुभव हमें बताइए। और अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका अब आगे मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, उस जगह का नाम आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि यश चोपड़ा की फिल्मों को अक्सर भारतीय सिनेमा का ट्रेवलॉग कहा जाता है। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से दर्शकों को केवल प्रेम कहानियां ही नहीं दिखाई बल्कि उन्हें देश विदेश की खूबसूरत वादियों की एक जादुई सैर भी कराई। संक्षेप में कहें तो यश चोपड़ा की फिल्में सिनेमा हॉल की एक टिकट में देश विदेश घूमने का एक पासपोर्ट थी। उन्होंने

भारतीयों को सिनेमा के पर्दे के जरिए दुनिया देखने की आंखें दी और पर्यटन को बढ़ावा देने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। तो बताइए, अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, उस जगह का नाम बूझिए। और चलिए फिर वादियों में चलते हैं और आपको बूझना है फिल्म का नाम, जरा जल्दी बताइएगा फिल्म का नाम। पिछले दिनों आप कौन सी वादियों की ओर गए थे, किन पहाड़ों की सैर की थी, ये भी आप बता सकते हैं।

मेरे भारत से ये है कार्यक्रम सुरीला सफर, और आज सुरीला सफर में यश चोपड़ा के जन्मदिन को हम याद कर रहे हैं, महेंद्र कपूर की याद को नमन कर रहे हैं, और साथ में विश्व पर्यटन दिवस और विश्व नदी दिवस हम मना रहे हैं। तो आप अपनी बातें, अपनी यादें साझा करते चलिए। हमने आपसे पूछा था, अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? अभी तक बहुत कम जवाब श्रोताओं की ओर से आए हैं, और अपनी यादें आप ताजा करिए। और अगर आप सफर पे गए हैं और किसी पहाड़ पर, किसी पहाड़ी पर वादियों की सैर की है आपने, तो सबसे यादगार सफर कौन सा रहा है ये भी बता सकते हैं, उस जगह का नाम आप बता सकते हैं, ताकि जब श्रोताओं को मौका मिले तो उन जगहों पर वो जा सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि यश चोपड़ा को भारतीय फिल्मों में विदेशी नजारों, विशेषकर बर्फीली वादियों और खूबसूरत झीलों को दिखाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपनी कई फिल्मों की शूटिंग स्विट्जरलैंड पर्यटन में की। फिल्म चांदनी का प्रभाव, उन्होंने फिल्म चांदनी के बड़े हिस्से की शूटिंग स्विट्जरलैंड में की, जिसके बाद वहाँ भारतीय पर्यटकों और फिल्म निर्माताओं का जाना काफी बढ़ गया था। श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत फिल्मों में सुंदर लव स्टोरी और खूबसूरत जगहों का दर्शन कराने वाले यश चोपड़ा जी के गीतों पर लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है, जो संस्कृति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में आधुनिक तकनीक और नवाचार की भूमिका पर जोर देती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब भी ऐसा मौका होता है, एक साथ छुट्टियां हो, तो साथ में और भी छुट्टियां लेकर धर्मपत्नी, मैं और मेरे बच्चे ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां नदियों और पहाड़ों के दर्शन हो, साथ में तीर्थ स्थलों की भी। तो बताइए कि आपके शहर या गांव के इर्द गिर्द कौन सी नदी है, और नदी को साफ सुथरा रखने के लिए क्या आप कोई निजी स्तर पर कोई मुहिम चलाते हैं, या आप भी कूड़ा कचरा करके चले आते हैं अपनी पहचान छोड़कर? ये बहुत जरूरी है कि जब आप नदी के किनारे जाते हैं तो नदी को एक जीवंत इंसान के रूप में देखें, और ये देखें कि उन पर कचरा फेंकना कितना अन्यायपूर्ण हुआ। तो आप अपने आप उन्हें प्रणाम करेंगे और वहां जो कचरा होगा उसे बीन कर डस्टबिन में डाल कर आएंगे। चलिए चलते हैं वहीं जहां पर इबारत में वादा किया गया था, और किसी ने कहा था, चलो सजना जहां तक घटा चले। तो कहां तक घटा है और कहां तक आपकी यादें हैं, यादों को दोहराइए और जहन में बसाइए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर साझा कीजिए। बताइए हीरो हीरोइन का नाम।

मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार का नाम पूछा था हमने, मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर। सभी श्रोताओं ने त्वरित जवाब

हमने सवाल पूरा किया, उधर जवाब आने शुरू हो गए। एक श्रोता ने लिखा है कि हरे भरे मैदान का सीना चीर कर बहती हुई एक बहुत छोटी सी जलधारा जिसे महज एक छलांग लगाकर ही पार किया जा सकता है, लेकिन वो कोई नहर नहीं बल्कि एक नदी है, क्योंकि नदी की सभी विशेषताएं उसमें है। मैं कभी गई तो नहीं, जाने की बहुत इच्छा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने पर्यटन के बारे में पूछा है, तो मैं समंदर के तट पर मुंबई और मेरे प्रिय रेडियो स्टेशन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन और अपनी सभी उद्घोषिका बहने यूनुस खान साहब से मिलने की तमन्ना रखता हूँ। कब पूरी होती है मुझे नहीं पता। भाई आप अपनी तमन्ना जब चाहे पूरी कर सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे अक्सर लोगों का पहाड़ों पर चढ़ने का जुनून बहुत उत्साहित करता है, खासकर कुछ लोग एवरेस्ट की चोटियों को छूकर लौटते हैं तो इस जर्नी पर उनकी आत्मकथा से संबंधित किताब हमारे मन को छू जाती है। तो अब जरा बताइए कि आपने कोई पहाड़ों और इस तरह के संस्मरण वाली किताब पढ़ी, तो जरा लिख डालिए कौन सी किताब, हो सकता है हमारे श्रोता भी उसे पढ़ना चाहे। एक श्रोता ने लिखा है कि घूमना तो मुझे बहुत पसंद है, प्रकृति का सुहावना सफर हो और झरने की अटकेलियां करते हुए ऊंची ऊंची पहाड़ियां जहां से ठंडी ठंडी हवा, ऐसा संगीत मानो जमीन आसमान सब झूम रहे हो, क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा वाह मेरा चयनित गीत बज रहा है। भाई आप अकेले का नहीं, बहुत सारे श्रोताओं के गीत आज इस प्लेलिस्ट में शामिल हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया भर की यात्रा करने के बाद भी जब कुछ जगहें दिल पर ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। मेरी यात्रा संस्मरण में कई देश और शहर शामिल हैं, लेकिन दुबई का समंदर का किनारा, न्यू जर्सी की एक जगह और भारत के अंतिम छोर पर स्थित कन्याकुमारी की जगह, इन तीनों स्थानों के प्राकृतिक सौंदर्य और आकर्षण ने मुझे सबसे ज्यादा सम्मोहित किया है। और हमने आपसे पूछा था कि आपकी सबसे यादगार यात्रा कौन सी रही, उस यात्रा के बारे में बताइए, उस जगह के बारे में बताइए, और नदी के किनारे बिताया हुआ कोई यादगार लम्हा, कोई यादगार पल हो तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। और अब एक और पहेली आपसे पूछ रही हैं, बताइए हमें कि 1994 में यश चोपड़ा को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। हमने सन बता दिया है, फिल्म का नाम आपको बूझना है। तो अब बताइए कौन सा गाना आपने चुना था, यही जो हम पूछने बजाने जा रहे हैं या कोई और गाना। और हाँ जरा बताइएगा इसमें कौन है हीरो, कौन है हीरोइन। ये गाना महेंद्र कपूर की याद के नाम। गीतकार और संगीतकार का नाम भी आप बूझ सकते हैं। पहली पहली हीरो हीरोइन का नाम, कहाँ पर फिल्माया गया है ये गाना, ये पता है तो ये भी बता सकते हैं आप। बहुत सारे सवाल हैं, इनमें से कोई एक सवाल आप

कपूर और आशा भोसले की आवाजें साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत फिल्म गुमराह, और बहुत जल्द जवाब आ रहे हैं श्रोताओं की ओर से सुनील दत्त और माला सिन्हा। एक श्रोता ने लिखा है कि सपने और सुंदरता का जब भी मेल होता है तब बनता है सिनेमा। अंधेरे सिनेमा घर में चांदी के पर्दे पर फिल्मी सितारे हर एक तरह के कौतुक से सम्मोहन रचते हैं। इन किरदारों की डोर निर्देशक के हाथ में होती है और जब निर्देशक यश चोपड़ा जैसा हो तब एक फिल्म बनती है जो दर्शकों को कभी ट्यूलिप से भरे फूलों की घाटी में ले जाती है तो कभी पहाड़ पर। क्या बात है, वे बड़े ललित शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है। वे जबरदस्त तरीके से कहानी में मसाला लपेटते हैं। भावना के झंझावात में डूबते मन को किस्म किस्म के कलाकारी से यश चोपड़ा दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींच कर ले आते हैं। यश चोपड़ा की फिल्मों में चांदनी का होना किसी कविता में संगीत के मिलने जैसा है। चांदनी वो नाम है जिनके बिना यश चोपड़ा की फिल्मों की कल्पना नहीं की जा सकती है। भी बात यहाँ यश चोपड़ा की फिल्मों की है लेकिन सुनने की बात है, दिल की दास्तां है, चांदनी है, गाना वैसा ही है। तो चलिए पहले ये गाना सुन लेते हैं और आप जरा बूझिए फिल्म का नाम। और हाँ, आपसे हमने कुछ सवाल पूछे थे, उसके जवाब आपने लिखे या नहीं, अगर नहीं लिखे तो लिख डालिए क्योंकि आपके जो जवाब आ रहे हैं आप तक हम पहुंचाते जा रहे हैं। अब हमें जरा ये भी बताइए कि आपके शहर या गाँव के आस पास कौन सी जगह है जहाँ लोग घूमने आते हैं, या कौन सी नदी है जहाँ पर लोग आते हैं और सुकून पाते हैं। कुछ शहर में कुछ ऐसे पार्क भी बने हैं जहाँ कुदरत की छाँव मिल जाती है, तो वो भी आप बता सकते हैं ताकि आपके शहर कभी कोई श्रोता जाए तो उन जगहों पर घूम सके, उन जगहों को देख सके आपकी निगाहों से। चलिए सुनते हैं ये गाना। आपको पूछना है फिल्म का नाम और आवाज किसकी है।

हमने आपसे पहले पूछी थी 1994 में यश चोपड़ा को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है फिल्म डर, लेकिन कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। कोई बात नहीं, आपने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, ये हमें बड़ी खुशी दे रही है। इस बात के लिए हमें बहुत खुशी है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि हमारे कुछ दूर पर स्थित काली देव की नदी है जिसमें लोग जाते हैं पर्यटन के लिए, तो हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि नदियों के किनारे डिस्पोजल पानी की बोतल अक्सर पड़ी रहती है जो जीव जंतुओं को और प्राकृतिक वातावरण को दूषित करती है। श्रोता ने लिखा है कि हमें जीवन में बहुत ज्यादा घूमने के मौके तो नहीं मिले, फिर भी जितना घूमा उसमें कुल्लू मनाली की बर्फीली वादियां लुभाती हैं और गुजरात के जंगल में शेर का इंतजार करते हुए जंगल का नजारा और जो सन्नाटा निर और शांति और निर्मोही वातावरण की अनुभूति की है उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक प्यारी सी छोटी सी बात, प्रकृति बोलकर हमें शुक्रिया नहीं मांगती, बस इतना चाहती है कि हम उसकी खामोशी को समझें। एक श्रोता ने लिखा है कि गांव के पास कंडराला जंगल है, वहां लोग आते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी, अगर मौका मिला तो मैं बार बार राजस्थान की रेतीली वादियों में जाना चाहूंगा, वहां सुनहरी रेत, डूबता सूरज और लोकगीतों की धुन दिल को छू जाती है। वही क्या बात है, थार के टीलों पर खड़े होकर सारी चिंताएं मिट जाती हैं और वहां पर फोटोग्राफी का शौक भी तो होगा जिसे आप अपने कैमरे में कैद करेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं चाहूंगा एक बार परिवार के साथ मॉरिशस जाऊं। एक श्रोता ने लिखा है कि पिछले साल उत्तराखंड की सैर की थी सपरिवार। हमने शिमला से मनाली आते समय देवदार और चिनार के पेड़ों पर जमी बर्फ, सड़कों पर जमी बर्फ को देखना अद्भुत ऐसा सौंदर्य जो आंखों से होकर सीधे दिल में उतर जाता है। क्या बात है भाई, आपने तो चित्र खींच दिया, हमारी आंखों के सामने वो देवदार और चिनार के कतार नजर आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत में जब कुदरत का रंग शामिल हो तो क्या कहने, मन बाग भाग हो जाता है। आपकी इबारत प्रेरणा बन जाती है क्योंकि मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। तो फिर बताइए, पहाड़ों पर या वादियों पर आप जाते हैं तो अकेले जाना पसंद करते हैं या परिवार के साथ, मतलब सोलो ट्रिप पर जाते हैं या फिर पूरे परिवार के साथ, मित्रों के साथ जाना पसंद करते हैं? और हाँ, ये भी बताइएगा कि जब आप पहाड़ पर जाते हैं, वहाँ पहाड़ी पर बैठे खामोशी से देखते हैं वहाँ की खूबसूरती को, नदी के किनारे बैठते हैं, तो आप उन पहाड़ों से, नदी से अगर कोई एक सवाल पूछना हो आपको तो कौन सा सवाल पूछेंगे? अब जरा आप बताएंगे क्या है फिल्म का नाम और किसकी है आवाज?

हाँ तो भाई बताइए, दिल की दास्तां आपने कभी सुनी है? खुद के दिल की दास्तां सुनी है क्या? बताइएगा जरा हमें भी। और अगर आपके दिल की दास्तां किसी ने सुनी और आपने सुनाई तो क्या था अनुभव? और ये बातें आप बताते रहिए और साथ में हमारे सवालों के जवाब, पहेलियों के जवाब भी देते चलिए। हमने आपसे पूछा था पहाड़ या नदी से कोई एक सवाल पूछना हो आपको तो आप कौन सा सवाल पूछेंगे? यूं तो आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर बहुत सारी टिप्पणी करते हैं, तो कोई सवाल पूछना हो तो क्या पूछेंगे? और हमने आपसे पूछा था कि आपके जहन में सबसे खूबसूरत वादी घाटी कौन सी है और कौन सी जगह आपकी यादों में बसी है? एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी जन्मस्थली हरदा, जो मध्य प्रदेश का एक उन्नत जिला है, यहाँ पावन माँ नर्मदा का मीठा जल प्रवाहित होता है। मेरे जिले की जलवायु बहुत अनुकूल है खेती के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि यदि पहाड़, नदियाँ, तालाब स्वच्छ होंगे तो हम पर्यटन के लिए जाएंगे, नहीं तो आने वाला कल बस पर्यटन नाम के ही लिए रह जाएगा। एक श्रोता की टिप्पणी है, पर्यटन का असली आनंद तभी है जब हम किसी जगह को सिर्फ देखे नहीं बल्कि उसे महसूस करें। पहाड़ों की शांति, नदियों की कलकल, हरियाली वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यटन हमें घर से दूर ले जाता है लेकिन प्रकृति हमें अपने और करीब ले जाती है। कहीं पहाड़ों की खामोशी, कहीं नदी की कलकल, कहीं पेड़ों की ठंडी छांव। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर हमें आज पर्यटन की उस दुनिया में ले जा रहा है जहाँ सफर केवल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं बल्कि प्रकृति को महसूस करना है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का गद्यांश प्रकृति और देशाटन से जुड़ा है। सुरम्य वादियाँ, पर्वतों की सैर, इच्छा हर एक दिल में रहती है। हरी हरी वादियों में जब कभी आसमान में आवारा से घूम रहे बादलों को थोड़ा आराम और सुकून की चाहत जाती है तो वो किसी भी वादी में पहुंच जाते हैं। वादियां बादलों का दूसरा घर होती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, सुरीला सफर हम तय करेंगे नदी की सुरमई धारा, झरनों के कलकल, पहाड़ों की ऊंचाई और हरे भरे पेड़ों की शीतल छाया के साथ। तो चलिए एक बार फिर सैर करते हैं वादियों में। फिल्म का नाम पूछिए फटाफट और किसकी है आवाज, गीतकार का नाम भी बता सकते हैं। फिलहाल फिल्म का नाम बताइए। और नदी से कोई सवाल पूछना हो तो सवाल भी लिखिए।

आरंभ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश और आरती मुखर्जी की आवाजों में। सभी श्रोताओं ने फिल्म का नाम सही बताया और जल्द बताया। एक श्रोता ने लिखा है कि कंचनजंगा पर्वत सामने से देखने की इच्छा है। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं कोलकाता में रहती हूँ, यहाँ के मंदिर कालीघाट दक्षिणेश्वर देखने योग्य है। यहाँ की दुर्गा पूजा बहुत फेमस है और गंगा नदी है। अब जरा एक सवाल का जवाब दीजिए, यश चोपड़ा की कौन सी फिल्में आपने देखी है? क्या उस फिल्म का कोई संवाद याद है? अगर याद है तो वक्त बहुत कम है, इतने कम वक्त में देखते हैं कौन श्रोता लिख पाते हैं कुछ संवाद। और हाँ, यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म का नाम तो आपको पता होगा, उसका नाम भी बताइए। और अब सुनते हैं ये गाना।

एक श्रोता ने संवाद लिखा है, चुनाव सेठ जिनके घर शीशे के हो वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते, किस फिल्म का डायलॉग है जरा ये बताइए। और कोई संवाद आपको याद हो तो आप लिख डालिए भारती के फेसबुक पेज पर, जो सुरक्षित रहता है फेसबुक पेज पर, हम पढ़ सकते हैं बाद में भी।

लेते और सुरीला सफर का ये सफर चलता रहता, लेकिन क्या करें, जो कुछ बची हुई टिप्पणी है वो हम पढ़ देते हैं। श्रोता ने लिखा है कि मुझे कभी कभी फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं, दीदी जी आप पूजा हैं तो हम आपके पुजारी हैं, और हमने आपसे पूछा था यश चोपड़ा की कौन सी फिल्में आपने देखी हैं, क्या उन फिल्मों के संवाद याद है। कुछ श्रोताओं ने संवाद लिखे, अगर आपको याद है तो आप भी लिख सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। लेकिन अब बिल्कुल वक्त नहीं है कि हम कोई गाना सुनवा सके या आपसे और कोई सवाल पूछ सके। तो बस आज का सफर बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: This is Akashvani giving you the news.
1: For news at your fingertips, follow us on X at AIR News Alerts and join our WhatsApp channel, Akashvani News.
0: Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sudarshan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in a special series, we bring you a closer look at how the government has shaped the startup movement that drives employment generation and works on key deep tech areas. More from a correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi gave a call for Startup India in 2015 that laid the foundation for a vibrant entrepreneurial culture and opened new avenues for private participation in strategic sectors. Over the last decade, startups have increased from 350 to over 2 lakh ventures, generating over 25 lakh jobs. India today owns the world's third largest startup ecosystem. The Center for Cellular and Molecular Platforms, or CCAMP, is India's premier research and innovation hub and one of the largest life sciences incubators that have directly funded and mentored over 700 startups over a decade. Speaking to Akashvani, the co-founder and director of InExcel, Nitish Kumar Jangir, has thanked CCAMP and Government of India for their support and shared information on how his life-saving devices called SANS, WrapCare and Fetal Life have aided critical care and maternal health across the world.
3: We are seeing from the last many years that India is becoming a good production house, specifically for global markets in medical devices, and we want to shift from just a production house to production plus innovation house to create innovative, high-quality products which will make India a powerhouse for medical devices or medical technology innovation.
2: The startups and unicorns are helping build a supportive ecosystem, enabling the country to harness its demographic dividend and emerge as a global innovation hub. Sudhindra, Akashvani News, Bengaluru.
0: Indian Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and West Uttar Pradesh today. The weather agency has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Bihar, East Uttar Pradesh and Himachal Pradesh for the day. According to IMD, Andaman and Nicobar Islands are likely to witness thunder squall till tomorrow. The Met Department has also predicted thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds over Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Bihar, Rajasthan, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and West Uttar Pradesh for the next 2 to 3 days. In men's cricket, West Indies were 11 for no loss in 1.2 overs against host India on the first one-day international of the three-match series at the Greenfield International Stadium in Thiruvananthapuram when reports last came in. Earlier, India won the toss and opted to field first. Both Rohit Sharma and Virat Kohli returned to India's ODI lineup after a two-month break from this format. Shubman Gill will lead Team India for this ODI series, while Shai Hope captains the West Indies. The second ODI will be played in Guwahati on September 30, followed by the third one-day international in New Chandigarh on October 3rd. The ODI series will be followed by five T20 internationals. Shreyas Iyer will lead the team in the T20I series. The T20 International Series will begin in Lucknow on October 6th, followed by the second T20I in Ranchi on October 9th. India made a strong start to its Asian Games archery campaign in Aichi, Nayoga today, with the men's and women's compound teams advancing to the semifinals along with the recalf. India today claims two silver medals in squash. India's Abhay Singh won silver in the men's single squash. In the final, he lost to Malaysia's EUN 11-9, 11-5, 11-5. The world number 26 Indian was unable to match the number 18 Malaysian, who defended his Asian Games title with a commanding straight games victory. In women's single squash, Anand Singh also bagged silver as she played the final against Malaysian Sivashankari Subramaniam. Earlier, Ankush Fundel assured India of his first boxing medal at the Games after defeating Tajikistan's Nekru Salimov 5-0 in the men's 80-kilogram quarterfinal today. India is now on the 11th position in the medals tally with a total of 32 medals, including 4 gold, 14 silver and 14 bronze medals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says surgical strike and Operation Sindoor demonstrated new example of India's counter-terrorism policy to the world, sending message that terrorist attacks will be met with befitting response. Prime Minister Modi in his Mann Ki Baat program on Akashvani urges people to work together for Nasha Mukti Yuva. Prime Minister urges people to participate in census and use self-enumeration facility, says first phase of census nearly complete. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel flag off country's first LNG power train at Sabarmati. Anirudh Singh, red alert for heavy to very heavy rainfall issued in Uttarakhand and West Uttar Pradesh for today. And in Asian Games, Anirudh Singh bagged a silver. Abhay Singh wins silver in men's single squash. Boxer Ankush Fangal assures battle. And with that, we end the midday news.
4: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। आगे भी आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना के सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
5: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
5: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकाले। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
4: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
5: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढ़ेरा में सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया था।
5: 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ, यानी मोढेरा मंदिर विध्वंस के भी इस साल 1000 साल हुए हैं। जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था, बल्कि कुछ ही समय में मोढेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवरता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
4: श्री मोदी ने लोगों से मोढेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
5: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुट रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान हाल ही में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
5: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माय भारत के वॉलंटियर शामिल है और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे। माय भारत पर एंथम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है।
5: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। ये मिजो समाज के तनु मडियाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह से गणेश उत्सव मनाया गया। थाईलैंड के पंथौन थीरखानों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान गणेश के लिए अपार श्रद्धा विदेश में भी है। वहां भगवान गणेश की पूजा का फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने 1500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।
6: नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार नई सुविधाएं रेलवे में लाए, रेलवे को आधुनिक किया और अब जैन पट्टी मुंबई से वडोदरा तक पहली लॉन्ग होल डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा हो गया है। देश में माल की आवाजाही के लिए टैक्स कम है, मगर उस वक्त डबल डेकर मालगाड़ी की कल्पना सफल हो जाए तो हमारी वहन क्षमता 2 गुनी हो जाएगी।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत भविष्य के लिए अपनी युद्ध क्षमता विकसित कर रहा है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का भी प्रयास कर रहा है।
7: पिछले 12 वर्षों में हमारे डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर हमारे अप्रोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हमारा ध्यान वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज हम आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
4: थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिए उत्पादन में आत्मनिर्भरता काफी नहीं होगी, बल्कि लंबे संघर्ष की स्थिति में अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखना और अनुकूलन क्षमता भी महत्वपूर्ण है। एक रक्षा सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि युद्ध का स्वरूप, तकनीक और अवधि तेजी से बदल रही है, जिसके लिए क्षमता विकास और आत्मनिर्भरता भी तेजी से विकसित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे सरकार का स्टार्टअप अभियान रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है और प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्टार्टअप इंडिया का आह्वान किया, जिसमें एक जीवंत उद्यमिता संस्कृति की नींव रखी और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए नए रास्ते खोले। पिछले दशक में स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है, जिससे 25 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। बेंगलुरु को भी इस स्टार्टअप इकोसिस्टम से फायदा पहुंचा है। यहां 17,000 से अधिक स्टार्टअप्स का केंद्र है, जो वैश्विक बाजार के लिए उत्पादों का डिजाइन और इंजीनियरिंग कर रहा है। सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म या सी कैंप भारत का प्रमुख रिसर्च और इनोवेशन हब है और सबसे बड़े लाइफ साइंसेस इंक्यूबेशन में से एक है। इनएक्सेल के सह संस्थापक और निदेशक नीतीश कुमार जहांगीर आकाशवाणी से बात करते हुए सी कैंप और भारत सरकार से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए बताया है।
3: इनएक्सेल में हमारा जो विजन है इस टू वेंचर की जो

0: यूनिकॉर्न एक सहायक इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहे हैं, जिससे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न देश अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा सके और एक वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में उभर सके। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी बन रहा है। श्री शेखावत ने कहा कि देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्राकृतिक विविधता देश के लाखों युवाओं के लिए नए अवसरों का स्रोत बननी चाहिए। एशियाई खेलों में आज अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। दोनों खिलाड़ी अपने अपने फाइनल मुकाबले में मलेशियाई खिलाड़ी से हार गए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। वहीं तीरंदाजी में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने रिकर्व और कंपाउंड दोनों स्पर्धाओं के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य सहित 32 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। तिरुवनंतपुरम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में किसी नुकसान के 38 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। कृषि विभाग आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने और कृषि उत्पादन, उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर भी वे विचार विमर्श करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के आधिकारिक दौरे पर केरल पहुंचे। वे कोल्लम के अमृतापुरी में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि माता अमृता नंदमयी का पूरा जीवन मानवता के प्रति प्रेम और सेवा के संदेश से परिपूर्ण रहा है। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ मिलकर नेपाल में बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए माता अमृता नंदमयी मठ की ओर से भारत में नेपाल के राजदूत सुरेंद्र थापा को 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्री लावरोफ ने कहा कि रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों का वैमुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, तेज है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है आए दिन बहार की।

0: साथियों, अभी आपने सुना महेंद्र कपूर को इस गीत में, जिसे लिखा था SH बिहारी ने। संगीत था ओपी नैयर का और फिल्म का नाम था कहीं दिन कहीं रात। एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है, वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सभी लोगों, उसका पहल में वो लेख छपा था कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने असीम फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। साथियों, आइए अब सुना जाए अगला गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है आए दिन बहार के।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एक बार फिर महेंद्र कपूर की आवाज में। गीतकार है राजेंद्र कृष्ण, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है अनमोल।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कॉफ।
1: अरे ओरे
2: संगीत के साधक
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
2: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भाव में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिरो दिन।
2: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सिंह।
0: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, ये मेरे तो निर्भर गोपाल दूसरे ना कोई, ये जो भाषा है ये सजग खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
2: 1 अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: लीजिए सुनिए अगला गीत महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार है शिवान रिजवी, संगीत है ओपी नैयर का और फिल्म का नाम है दिल और

साथियों लीजिए सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा गीत, संगीत है रवि का, इस गीत में आवाज है महेंद्र कपूर की और फिल्म का नाम है हमराज।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है भरोसा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना के सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और इसका नतीजा सामने है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्यवाही की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: श्री मोदी ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर को हुए आतंकी हमले की इस वर्ष 25वीं बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने जनगणना के लिए लोगों से ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी देने की अपील की।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकाले। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू द्वारा दिए गए जीवन के कई मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के तहत देश भर के लाखों युवाओं ने हाल ही में मादक पदार्थों के सेवन और नशे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। श्री मोदी ने मन की बात में कुपोषण से लड़ाई की भी चर्चा की।
1: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। ये मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
0: वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। श्री मोदी ने पर्यावरण संरक्षण में असम के सोनाई रुपाई वन्यजीव अभयारण्य का उदाहरण दिया। प्रकृति के साथ मानव संबंध का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में एक प्रेरणादायक उदाहरण का जिक्र किया, जहां झड़खाली की कुछ महिलाएं मैंग्रोव वन लगा रही हैं। श्री मोदी ने सभी से पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करने और इसके विविधता की रक्षा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के निरंतर अच्छे प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए गांव के लिए बेहतर कस्बों तक पहुंचकर खेल प्रतिभाओं की खोज करना जरूरी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षो में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वैश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य सहित 32 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है, वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: लंबा लेख लिखा है सब लोग, उसका पहला नोवेल लिख सका था कहानी की काया और फिल्म की छाया, उसमें माना असलम फिल्मों को लिखा और उसमें इस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। सनावत से राजकुमार बोडाना, यश कुमार बोडाना, मास्टर अशोक वर्मा और शेख मूसा भाईजान, मोरटका बाफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, कोनिका और मानस पटेल। कटोरा तालाब रायपुर छत्तीसगढ़ से मदन लाल देवांगन, प्रभा भूपेश कुमार, कुसुम और तुषार देवांगन, भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर से स्वाति चौधरी, मालती देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, ललिता नारायण खुरचेतुम, सोनू और मोनू, दतरंगी से विश्राम मनोज कुमार और दशरथ राम, गुलाबरा छिंदवाड़ा एमपी से भाई राजू निखाड़े, अनीता निखाड़े, ऋषभ, यामिनी और सुरेश निखाड़े। आप सभी की पसंद पर सुनिए लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजों में ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है मून की गुड़िया।

साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखिए ताकि आपका नाम पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और फिल्म का नाम है चरस। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त अमरावती महाराष्ट्र से प्रोफेसर विवेक देशमुख, प्रोफेसर दीपक देशमुख, दिविज देशमुख और डॉक्टर अनिरुद्ध देशमुख। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, मुज्तुबा खान, आफिया खान, आयशा खान, हादिया खान और शुएब खान। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, पूजा भट्ट, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। रावल करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कलीचा। तो साथियों, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये न

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर पत्र लिखे हैं आप सभी ने पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश और ज्ञान भूषण शर्मा, अर्रिया चौकीदार से सौम्या नाजनीन, रुकैया खातून, जुबैदा खातून, आबिदा खातून, सरफराज आलम और समस्त परिवार, मिडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, मीनाक्षी तिवारी, हरिपाल कौर और सुनीता शर्मा, अयोध्या नगर रालीगांव शहर से विनोद कुमार डवड़े, प्रतीक शुसारी और प्रथमेश कुमार डवड़े और साथ में है विनोद मंडाड़े, कस्बा बराडा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, गुरु कीरत मंत और गुरु शब्द सिंह राहुल की पसंद पर सुनिए। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये गीत, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

0: साथियों, आपको बता दें, आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला स्नेहल भी से और योगिता जाधव से। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ और विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत की प्रस्तुत करता है तेजश्री कांगले।
1: मन चाहे गीत
0: मन चाहे गीत।

0: आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में प्रस्तुत है नाटक मुक्ति एक चिड़िया की, लेखक अजीत पुष्कल, निर्देशक मधुर श्रीवास्तव।
1: क्यों रे प्यारी, फिर तुमने झाड़ू तोड़ना शुरू कर दी? तू जब भी देर से आती है फर्श पे झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। काम तो सब हो गया है बहू जी। एक बात कहूँ बहू जी, अब क्या है रमेश बाबू, आप लोगों के बहुत हल्ला कान के हैं। अरे आप लोग तो अपन लड़का समझ के पान पोस के बड़ा के हैं, और न जाने कौन जाने के दुश्मनी निकालें, सारा गहना गुड़िया चुरा के भाग गए। तू मेरे घाव क्यों कुरेद रही है, चुप क्यों नहीं रहती? अरे अपन खून होता तो कभी ऐसा करते? अपना ही खून तो नहीं था रे, तेरे तो चार चार बच्चे हैं, तुझे संतान सुख की क्या कमी है? कोई कमी नहीं, आपन तो अपने रोटी बहु जी। आपने जितना पैसा रमेश बाबू के पीछे खड़ा किया, अरे उतने में तो नीमा दीदी मजे में निपट जाती। बेचारी नौकरी का कर्ज बढ़ा रही है। देख अगर काम पूरा हो गया हो तो जा, बस तक ना कर, मुझे इतना टीम कहा जो गप्पे मारू, चलती हूँ रामा। अपना खून, इस कुमार प्यारी ने सही ही बात तो कही है। मैं नाकामी की राख से अपने को ढकती रही, डॉक्टरों ने कहा मैं मां नहीं बन सकती, और मातृत्व की भूख मिटाने के लिए इतना स्वार्थी मैंने ये जुआ खेल डाला। उसकी फूली सूरत पर रीझ उसे अनाथालय से उठा लाई। क्या पता था कि उस बच्चे में ऐसे संस्कार जागेंगे। नीमा दीदी अभी 35 की ही तो हुई है, शादी हो जाए तो वो मां बन सकती है। उनके बच्चे में मेरा ना सही, मेरे पति के कुल का खून तो हो गया ही। ललिता इस समय तुम जरूर कोई अच्छी बात सोच रही हो। नीमा की कोई चिट्ठी आई क्या? नहीं, पर उम्मीद है छुट्टी में वो खुद आएंगी, और जब रमेश की हरकत का उन्हें पता चलेगा, समझ में नहीं आता कैसे आंख मिला पाऊंगी मैं। इसमें तुम्हारा क्या कसूर, भाग्य का खेल ही है और क्या। तुमने एक बच्चे की जगह कौवा पाला था जो पंख निकलते ही उड़ गया, उसी के चक्कर में नीमा देवी के लिए हम लोग लापरवाह हो गए। नीमा देवी की शादी के लिए एक बार कोशिश करो ना, मैं उसे खुलकर कुछ भी तो नहीं कह सकती। उनकी शादी ना हो पाने का पाप मेरे ही सिर पर है। उम्र इतनी हो गई है कि कायदे का लड़का और शादी करने के लायक अब मेरे पास पैसे भी तो नहीं है।
2: पैसे की बात छोड़ो, कमा धमा रही कुछ ना कुछ तो जोड़ रखे होंगे। कमाती धमाती लड़की को कोई लक्ष्मी ना माने तो भागा, नहीं मानते। अब तो लोग बहू को घास फूस और नौटू को लक्ष्मी मानते हैं।
1: अरे सभी के साथ ये बात लागू नहीं होती। देखो दौड़ भाग कर जिम्मेदारी पूरी कर ही डालो। बैठी कमला बहन, चाय बना कर लाती हूँ।
2: अरे बस बस, दरवाजे मत तोड़िए।
3: बस बस

एक भी बार नहीं पता है मेरा, देखिए देखिए।

0: विशेष पसंद है। देखिए, इस तरह की बात सुनकर मेरे शरीर में आग लग जाती है।
1: आखिर क्यों?
0: इसीलिए कि मुझे पुरुषों से घृणा है। मैं बदसूरत हूँ, इसलिए आज तक मुझे किसी पुरुष ने पसंद नहीं किया। कई हादसों के बाद मेरा खून सफेद हो चुका है। आपको पता नहीं मेरी जीभ में दर्द रहने लगा है।
1: सब ठीक हो जाए।
0: प्यारी तो चुप है। कमला जी,

0: यहाँ आते नहीं, जो मैं भूल चुकी हूँ उसको लोग क्यों उकसाते हैं। अच्छा लीजिए चाय पीजिए। शादी करके अभी आप माँ बन सकती हैं, बच्चे के लिए खून चाहिए। नानी खून ये तो आम बात है, कौन स्त्री आज नमक नहीं है। इसके लिए क्या लड़की शादी नहीं करती, उनके बच्चे नहीं होते। आपके लिए अब भी समय है।
1: मैं बदसूरत हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, कैसे बताऊँ आपको। इसलिए यही बेहतर है कि मैं शादी ना करूँ।
0: शादी तो आपकी माँ की नहीं थी, वो भी तो खूबसूरत नहीं थी।
1: शायद अब वो समय नहीं है।
0: सवाल समय का नहीं, खून की मांग का है, और आपके खून की भी मांग है।
1: मेरे दहेज जोड़ने की कोशिश में पिताजी टूटी साइकिल धकेलते धकेलते खुद टूट गए, पर कभी पूरा दहेज नहीं जोड़ पाए। पहला असर तो मेरे खून पर इस बात का पड़ा कि पिताजी मेरी वजह से दिल के रोगी हो गए थे। मरते समय उनके पास मेरी शादी के लिए 15,000 रुपए थे।
0: इतने रुपए थे, मैं वहां पे हाथ लगा देती तो शादी हो जाती। आखिर कैसे उनका खून का रिश्ता था।
1: खून का रिश्ता उनसे था, भाभी से तो नहीं।
0: और माँ, उन्होंने भी कुछ नहीं किया।
1: माँ ने भी एक दिन चुपके से हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। फिर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं बाहर चली गई। बस मैंने शादी का इरादा ही छोड़ दिया, या कहिए इन हादसों ने मेरा खून ठंडा कर दिया।
0: देखिए अगर आदत समय से टकराने से डर जाती है तो कमजोर पड़ जाती है। अब आप इन बातों को दिमाग से निकाल दें। मांग में सिंदूर और गोद में बच्चा सृष्टि के विकास के लिए औरत की इस भावना का जवाब नहीं है।
1: मगर कौन समझता है इस बात को। तीन जगह शगुन चढ़ा और तीनों जगह शादी से इनकार हो गया।
2: जी, बुरा तो लगता ही है, क्या कहा जाए ऐसे लोगों को।
0: मगर औरत के दिल से जिस दिन ये भावना खत्म हो जाएगी, ये दुनिया अनजान हो जाएगी।
1: जानी अनजानी लोग प्राकृतिक भावनाओं को छिन्न भिन्न करते जा रहे हैं, सारे रिश्ते अस्वाभाविक होते जा रहे हैं। जिन्हें मुझसे सहानुभूति होनी चाहिए वो मेरे मजाक उड़ाते हैं।
0: देखो इस तरह मन छोटा ना करो, लड़का ठीक है, शादी कर लो। सुनो, नई पौध के लिए चाहिए मिट्टी, वो तुम्हारी कोख में है। नई पौध के लिए चाहिए पानी, वो तुम्हारे खून में है। नई पौध के लिए चाहिए हवा, वो तुम्हारे सांसों में है।
1: पूरी जिंदगी जीने के लिए स्वीकार हो फूलों की हथकड़ी। मुझे बिल्कुल यूं मिल गई है।
0: हाँ क्यों नहीं।

0: बैठ गई हूँ जी। मैंने कुछ कहा क्या? हाँ, तो अपने समय को पहचानी है, खुद को मां को स्वीकार है।
1: विवेक जी,
0: हाँ।

मेरी जिससे शादी हुई है उसे जानती भी नहीं, अपरिचित से एकाएक प्रेम करने लग जाना कुछ अटपटा सा लगता है। मां ने सिंदूर भरने के बाद मुझे आसमान का तारा दिखाया गया था। अब किसी के लिए प्रेम प्रेम नहीं है, है तो फिर सपने बेचारगी।

कितनी बेचारों पुष्पी पुष्पी कर रहे हैं। हाँ, इस समय पर तो कथा बनी है, साथ में तो तारपुर के यहाँ आए हैं। अभी तारों को पाने के लिए तो ऊपर उड़े हैं, मगर आज तो आसमान में तारे मखमली नजर आ रहे हैं। क्यों हुआ? सुन रहे हैं बाहर से? क्या सो रहे हैं? शराब के नशे में क्यों है? यही है तेरा पता, तेरे सपनों का राजकुमार। सही है, सही है मेरे सपनों का राजकुमार।

जीवन भर धोना ही पड़ेगा। तुझे इतना साज श्रृंगार करने के बाद भी चादर से ढक कर विदा किया गया है, जानती है क्यों? क्यों नहीं? ताकि दुल्हन को किसी की नजर न लगे। ऐसा नहीं है, ताकि वो वर्जनाओं के बीच रहे, पति को छोड़कर किसी और को प्रभावित न कर सके। कौन हो तुम? क्यों इस तरह बोल रही हो? तुम चाहे जो भी कहो, अब उससे मेरी शादी हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है। बहुत बहुत बधाई। पर दूल्हा तुझे क्या देगा? सोने की अंगूठी या जिंदगी की गारंटी? आप इसे क्या बता दो? पर मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगी, ये कह सकती हूँ। अगर वो तुम्हें धोखा दे दे तो ऐसा मत कहो। मैं बदसूरत हूँ, मुझे आज तक किसी ने प्यार नहीं किया।

ไม่ใช่ตู้

0: ठीक कह रहे थे। इसी समय मुझे नेट पर लड़की हो जाना चाहिए, रहस्यमय। नहीं, मुझे शराब के गम अच्छी नहीं लगती। मैं बीच में ये तकिया रखे देती हूँ ताकि आप अपनी सीमा जाने और मैं अपनी।
1: अच्छा, अब क्या करूँ?
0: आप मुझसे पूछिए, रानी तुम क्या कर रही हो?
1: रानी तुम क्या करो?
0: गुलाब जल से नहाया है और केश सुखा रही
1: हूँ।
0: अब देनी में फूल गूंथ रही हूँ। ये फूल बसंत ने दिया। देखो, फूल बालों में बांधकर मैं रति की तरह सुंदर हो गई हूँ। Thank you.

0: 지금 아마 눈물 눈물 흘리고 하나 봤다.
1: 줄이야, 우리 대통령.

0: साथ तुम्हें नौकरी पर कब तक पहुंचना है?
1: मैं तो सोच रही थी ऐसी हालत में छुट्टियां ना करो और आराम करो।
0: मगर तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास और छुट्टियां हैं।
1: नहीं है तो क्या हुआ, बिना वेतन की छुट्टियां तो मिल जाएंगी।

0: पिछली छुट्टियां मैंने तो खर्च की तंगी हो जाएगी। सोचता हूँ तुम्हारे साथ मैं भी चला चलूंगा।
1: आप वहां क्या करेंगे?
0: अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो किसके साथ रहूंगा? और जबकि मेरे पास काम नहीं है तो तुम्हारी ही कमाई से तो चलेगा, इसमें अर्जी क्या है?
1: हिंदू मैं नहीं, मेरी नौकरी प्रिय है। देखिए ये जो खर्च आ रहा है ये कैसे होगा? मेरी तो पिछली तनख्वाह भी नहीं मिली।
2: सब होगा, तुम लोग चिंता मत करो। रखवा ये सामान वगैरह।
1: भाभी ये सब क्या है?
2: फल फूल मेवा मिठाई साड़ी सूट यही सब आज को भरा नहीं है ना, मगर यहाँ तो कोई इंतजाम ही दिखाई नहीं पड़ता।
1: भाभी मेरी तबीयत खराब थी, सोचा इस उत्सव को टाल दो, टालने की क्या जरूरत।
0: अबे भाभी के लिए तो तुम क्यों परेशान हो? अरे 100 का खर्च भी भाभी दे देंगी, तुम चिंता क्यों करती हो?
2: उत्सव का ही नहीं मैं बच्चे का भी पूरा खर्च दूंगी, इसमें चिंता की क्या बात है?
0: कोई बात नहीं है भाभी, कोई बात नहीं है।
2: अरे मैं तो वहां तक कहती हूँ, बच्चा मेरे ही घर में पले बढ़े बड़ा हो, अपना ही खून है, जो कुछ भी हमारे पास है उसी का तो होगा।
0: हाँ हाँ और क्या, भाभी बच्चा आपका ही है।
1: ये कौन होते हैं मेरे बच्चे को किसी को देने वाले?
2: बाकी बाबू आप अपने रिश्तेदारों को बुलवाइए, ये उत्सव धूमधाम से होगा। और ये देखिए अपना सूट, पसंद आया? और ये साड़ी, अरे नीलू दीदी कहाँ है?
3: आंगन में गई है, लगता है कुछ तबीयत गड़बड़ा है।
2: अरे ऐसे में तबीयत तो गड़बड़ाती ही है। नीलू दीदी,
3: नीलू दीदी,
1: मेरे पति को मैं नहीं मेरी कमाई चाहिए, भाभी को मैं नहीं मेरा बच्चा चाहिए। कितों के बीच फंसी छोटी सी लाचार चिड़िया हूँ, अपने को बचाऊं तो कैसे? कौन है मेरा, किससे कहूं? मगर मेरे पेट में जो बोल रहा है

मेरी दिल समझी, मैं ठीक हूँ, मेरा बच्चा ठीक है। फिर मतलब क्या है, क्यों बदलो तुम हो कौन? नहीं पहचाना, मैं तो

0: मुक्ति एक चिड़िया की, यह नाटक अभी आपने सुना। लेखक अजीत पुष्कल, निर्देशक मधुर श्रीवास्तव। ये हमारे आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है
2: एक विलक्षण गायक।
3: अरे ओ रे है

0: सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमिरो दिन राम।
0: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सदुख खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:00

0: ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ ਦਾਸਤਾਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਗੀਤ ਕੀ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਜੀਵਨ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣੀ ਉਨਕੀ ਯਾਦੋ ਕੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਾਥ संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। उत्तम जी बहुत बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
1: नमस्कार यूनुस जी, नमस्कार टू ऑल जो उजाला सुन रहे हैं।
0: मदन जी के साथ बहुत सारी यादें आपकी है संगीत बनाने की और रिकॉर्डिंग्स की, तो कुछ सुनहरी यादें हमारे साथ शेयर।
1: रिकॉर्डिंग की उनकी मुझे एक आज भी याद है। मैं पहुंचा रिकॉर्डिंग में और देख रहा हूँ कि एक आवाज आ रही है सिंगर की।
0: अच्छा,
1: कोई गा रहा है और वो भी क्लासिकल फील है पूरी। तो हमारी हिम्मत नहीं हुई तो मैं थोड़ा सा चुपके देखा तो मदन जी गा रहे हैं बाजा पकड़ के।
0: खुद ही गा रहे?
1: खुद ही गा रहे।
0: गाना कौन सा था?
1: गानी ऐसी आराम गा रहे थे, क्लासिकल गा रहे थे
0: जी जी।
1: और उनकी रिकॉर्डिंग थी। तो कुछ एक डेढ़ घंटे के बाद पता चला कि खंडाला में उनका एक्सीडेंट हो गया। वो गाड़ी में आए थे, गाड़ी में आए थे और आके जल्दी पहुंच गए और अपने खून आया हुआ उनको, उसमें अपने आप को ठीक करने के लिए वो संगीत का सहारा लिया।
0: ये घटना मुझे पता है, मदन जी के जब बेटे समीर कोहली जी आए थे विविध भारती, उन्होंने सुनाया था कि वो ट्रक से
1: निकाली।
0: गजब की बात है ये तो।
1: सारी संगीत के दौरान उन्होंने गाया बजाया तो उससे क्या होगा कि सारा जितना भी बैकलैश था ना वो सारा खत्म हो गया।
0: खत्म हो गया
1: इंटर म्यूजिक।
0: गजब की बात है।
1: देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी रेमेडी है।
0: हाँ।
1: आज डॉक्टर्स इंजीनियर सब म्यूजिक सीख रहे हैं ताकि हमको ईज मिले, हमको सुकून मिले, हमको स्ट्रेस फ्री हो।
0: हाँ।
1: ये कितना बड़ा एक एजुकेशन है कि वो आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी से ट्रक में बैठ के आया और स्टूडियो में आया, उन्होंने आते ही उन्होंने बाजा पकड़ा एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग। मुझे लगता है शायद एक डेढ़ घंटा गा रहे थे।
0: बाप रे।
1: जब हम पहुंचे तो आवाज चल रही थी, गा रहे थे। उसके बाद उन्होंने रिकॉर्डिंग की। ऐसा गाना मुझे याद नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग की।
0: जहां तक मुझे लगता है रुके रुके से कदम वो गाना था। वो गाना सुन लिया।
1: हमारे कदम रुकी गए थे।

0: मबम जी की यादें और भी शेयर की जाए और मबम जी जी से जुड़ी कुछ और बातें हमारे साथ बांटिए. म्यूजिक रूम की बातें, रिकॉर्डिंग की बातें.
1: म्यूजिक रूम में मैं उनके कभी नहीं गया
0: जी.
1: म्यूजिक रूम में एक दफा उनके साथ मैं गया था मास्टर जी के साथ,
0: सोनिक साहब के.
1: हाँ, सोनिक साहब सावन भादों का बैकग्राउंड कर रहे थे उनकी अपनी फिल्म.
0: हाँ,
1: तो मुझे बोलते उत्तम यहाँ बजेगा, मदन जी क्या चलते हैं वहां चलते बैठेंगे. तो मदन जी का प्लानो था. वो दूसरी दफा मैंने उनका म्यूजिक रूम देखा. पहली दफा जब मैं सुनाने गया था वायलिन
0: जी,
1: दूसरी दफा ये मैं मास्टर के साथ अरेंजमेंट करता था तब उनका लिखता था. तो बॉम्बे में से 3-4 दिन उनके म्यूजिक रूम में गए, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक लिखा. बस मेरी मदन साहब की ये यादें हैं. हाँ, एंड की जो याद है लास्ट की, उनका गाना चल रहा था मौसम का गाना दिल झूलता है
0: जी.
1: दिल झूलता है गाना अरेंजमेंट किया ज्ञान वर्मा ने. ज्ञान वर्मा को तो और रिकॉर्डिंग तो मुझे बोला उत्तम तू कंडक्ट कर ले.
0: तो इस गाने की रिकॉर्डिंग को आपने कंडक्ट किया?
1: इस गाने की जो फाइनल रिकॉर्डिंग है वो कंडक्टिंग मैंने की, म्यूजिक सारा उसका था.
0: अच्छा.
1: तो जब मैं कंडक्ट कर रहा था तो सामने मदन साहब बैठे हुए, तुम्हारी साहब, कौशिक साहब, सब बड़े गोपी जी गा रहे थे. तो मुझे इतनी याद है कि वो गाना खत्म होते होते तो उनका सर जो है वो टेबल पे लगा हुआ था,
0: पैनल की टेबल.
1: ही डजंट रिमेम्बर कि गाना खत्म हो गया.
0: अरे बाप रे.
1: ही वाज सो ड्रंक कहते हो या आई डोंट नो व्हाट स्टेट ऑफ माइंड ही वाज. वो पूरे ऐसे बैठ गए. बाद में गाना हम लोगों ने पास किया.
0: अच्छा.
1: गोपी जी ने और कौशिक साहब ने और मैंने, हम लोगों ने गाना सुना. ये टेक ओके है, ही डजंट एनीथिंग. इट वाज सो पैथेटिक.
0: ये दौर जो है वो निराशा का, बीमारी का,

0: वही पोएट्री है, उसको एक सैड और एक और ये इसका बहुत चर्चा हुआ था इंडस्ट्री में।
1: जी, ये
0: वो
1: पता
0: आपको
1: नहीं
0: याद है कि अरे यार मदनी का क्या गाना आया, और सैड भी है और हैप्पी भी है, बहुत चर्चा हुआ था इस गाने पे।
1: क्या प्यारी बात है,
0: हाँ,
1: वाह वाह वाह।
0: और ये गाना जो है सैड वाला, ये मैं कंडक्ट कर रहा था, ये फिल्म सेंटर का गाना है
1: जी,
0: और 60-70 म्यूजिशियन थे, बहुत अच्छा ध्यान में, बहुत अच्छा म्यूजिक
1: इसमें एक
0: ऑर्केस्ट्रा।
1: नकली फ्लूट सुनाई देती है।
0: हाँ, वो की फ्लूट है, वो
1: जी,
0: उसकी मेलोडी ने बजाया है,
1: वाह
0: वो
1: वाह वाह,
0: सैक्सोफोन के बहुत
1: क्या बात है।
0: मेलोडी सिंग करके,
1: जी जी
0: वो
1: जी
0: पंचम जी के असिस्टेंट भी थे और
1: बिल्कुल,
0: हमने साथ में बहुत काम किया।
1: मुरारी दादा को मैं विविध भारतीय लेके आया था, उनसे बहुत
0: हाँ
1: लंबी बातें रिकॉर्ड की
0: हाँ
1: थी।
0: वो मतलब ऐसी फ्लूट फिर इंडस्ट्री में बनी नहीं,
1: जी
0: वो
1: बिल्कुल,
0: उनसे शुरू हुई उन पे खत्म हो गई,
1: क्या बात
0: ऐसा
1: है।
0: हुआ।

0: मुझे आज भी याद है, रोशन जी गुजरे थे
1: जी, अचानक उनका निधन हो गया था,
0: अचानक निधन हो गया, हंसते हंसते
1: एक पार्टी में थे वो।
0: तो शायद दूसरे दिन सुबह का टाइम था, मुझे बॉडी को ले जाना था डरियस, तो मदन जी लेफ्ट रूम के बॉडी के बिल्कुल सर के पास बैठे हुए थे
1: जी जी
0: मदन जी, और हम लोग यहाँ, मैं था और काफी लोग खड़े हुए थे,
1: इंडस्ट्री के लोग,
0: इंडस्ट्री के लोग खड़े हुए, मैं बिल्कुल नजदीक खड़ा था। मदन साहब यहाँ लिटरली गालियां दे रहे थे रोशन जी को,
1: अरे बाप रे,
0: लिटरली गाली, मैं यहाँ गाली नहीं बता सकता,
1: जी
0: लिटरली माँ की गाली दी, लिटरली बहन की गाली दी, और कहा कि रोशन तू तो छोड़कर चले गया, अब मैं जवाब किसको दूंगा।
1: अरे बाप रे, अरे गजब,
0: आप सोचिए क्या भाव है,
1: क्या भाव है कि अब मैं जवाब किसको
0: डेड बॉडी पड़ी हुई है, रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और बोल रहे हैं कि जाहिर तू चले गया, तू चले गया, मैं जवाब किसको दूंगा, अभी
1: किसके लिए म्यूजिक
0: किसके लिए
1: बनाऊंगा।
0: म्यूजिक बनाऊंगा,
1: अद्भुत बात है
0: ये मुझे आज भी है।

0: कुछ 15-20 साल 25 साल के बाद में हमारा एक सोनिक साहब का छोटा भाई राज सोनिक जी मेरा काम करता था, लास्ट तक मेरे साथ काम किया, हमारे कुछ बात नहीं तो बोला मैं तो आपके बाजू में खड़ा हुआ था, मैंने ये बात सही है गाली, बोले गालियां इतनी गालियां दे रहे थे हम सोच नहीं सकते, मगर मैडम जी को ये पता ही नहीं कि लोग बैठे हुए यहाँ पे एंड इज अब्यूजिंग हिम,
1: लेकिन वो इतने जज्बाती हो गए,
0: जज्बाती हो गए थे, इतना प्यार था, एक आत्मा का जिसको प्यार कहते हैं
1: वो था,
0: तू तो चलेगा किसको जवाब दो,
1: जैसे
0: संगीत ही चले गया हो ना ऐसा हो गया ना
1: जी,
0: क्योंकि उस दौरान में बहुत रिस्पेक्ट थी एक दूसरे की, अगर आपने एक अच्छा गाना लिख दिया तो आपको लिखने वालों के पास फोन आ जाएंगे,
1: बिल्कुल
0: एक साय साहब ने अच्छा गाना लिख दिया तो मजदूर साहब भी फोन कर रहे हैं, आनंद लक्ष्मी भी फोन कर रहा है, तो वो भी फोन कर रहा है, तो वो भी फोन कर रहा है, तो आज अगर आप अच्छा कुछ करते हो तो उसको खत्म कैसे किया जाए ये सोचा जाता है
1: जी,
0: ये दौर में फर्क हो गया
1: जी जी
0: वो दौर था प्यार का, अब दौर है दुश्मनी का,
1: जी जी जी
0: कि दुश्मनी कैसे की जाए।
1: आपने मदन जी का जिक्र किया और उसके बाद रोशन साहब का जिक्र आया, उनसे भी आपका एक नाता रहा है, जिनसे जुड़ी यादें शेयर कीजिए।
0: बड़ी खूबसूरत, हम लोग पहली रिकॉर्डिंग बजाने गए, कुछ 7-8 बच्चे लोग थे,
1: अच्छा
0: उन्होंने बुला लिया और मुझे याद है कि श्यामराव जी और भूपी जी केसी जी
1: ये म्यूजिशियंस थे,
0: ये उनके अरेंजर थे,
1: अच्छा
0: ये उनके सलाहकार थे केसी और श्यामराव, भूपी जी तो दोस्त थे उनके, तो हम लोग पहुंचे, पूरा रिसल रिसल हो गया 10:15 बजे
1: जी,
0: छोटा सा आदमी आता है 4.5 फुट का, रोशन जी आ गए,
1: वो छोटे कद के,
0: मैं पहली दफा देखा उनको
1: जी,
0: तो आते किसी से कुछ कोई बात नहीं, सीधा ऐसे आया अंदर, ऐसे जैसे वो मैडम बैठी है ऐसे अंदर चले गए
1: जी,
0: अंदर से माइक्रोफोन और बोलते हाँ म्यूजिक सुनाओ, अभी म्यूजिक सुनाओ, अभी जब तक केसी जी वन टू नहीं बोलेंगे हम तो बोल नहीं सकते, हम सब बैठे हुए, आवाज आ रही है कि म्यूजिक सुनाओ, तो केसी चुप, श्यामराव भी चुप, भोपी भी चुप, हम सब चुप बैठे, कम से कम 60-70-80 म्यूजिशियन तो होंगे, फिर अंदर से अरे म्यूजिक क्यों नहीं बोला था, म्यूजिक सुनाओ केसी श्यामराव म्यूजिक सुनाओ, फिर चुप,
1: अरे
0: अब ये मैं हम सोच रहे नए बच्चे अरे की ये क्या हो रहा है, बोल रहा है म्यूजिक सुना हुआ हम सब चुप बैठे म्यूजिक रेडी है, कैसे बोलते ऐसे थोड़ी ना सुनाएंगे, हाँ तो फिर कैसे सुनाओगे, पहले अपने प्यार से बोलिए तो सही, अभी प्यार कौन सा, अंदर से माँ बहन की कहानी सुनोगे, अरे हम तो हैरान हो गए, ये कौन सा प्यार है यार, वहां की गाइस म्यूजिक सुनाओ, ये म्यूजिक सुनाओ, ये म्यूजिक सुनाओ, अब सुनाओगे ऐसा, अब सब अब सुनाएंगे म्यूजिक, और उसके बाद म्यूजिक शुरू,
1: प्यार था ये
0: म्यूजिक शुरू हुआ, आशा जी थी या पता नहीं कौन था, आशा जी आई रिहर्सल किया, 2-2.5 घंटे 3 घंटे में गाना गाता,
1: वाह वाह वाह वाह,
0: ये पहली याद थी उनके साथ,
1: क्या बात है,
0: ऐसा एटमोसफियर, आप सोचो कि वो म्यूजिशियन कह रहे हैं पहले हमको गालियां दो
1: तब बजाएंगे,
0: तब हम बजाएंगे, तो ये एटमोसफियर था
1: जी, उनके साथ आपने कुछ गाने बजाए,
0: गाने बजाए लेकिन कुछ याद नहीं कौन कौन से गाने बजाए,
1: अच्छा
0: याद नहीं,
1: एस जी बर्मन,
0: अरे बर्मन दादा तो अरे बाप रे,
1: उनकी यादें बाटी है,
0: बर्मन साहब के यहाँ तो बजा ही रहते क्योंकि सेम ग्रुप था
1: जी जी,
0: पंचम जी का इतना मुझे याद है कि रूप में रिकॉर्डिंग थी और देव साहब की फिल्म थी,
1: हाँ
0: शायद गाइड होगी,
1: ओके
0: तो हम लोग बजा रहे थे, रिहर्सल होगी रिहर्सल होगी, तो बर्मन साहब ने कुछ मुरारी जी को पीस बताया, बीच में खड़े होके मेरे की बात है पीस बताया उन्होंने, तो उन्होंने वो पीस बताया, मैंने वो यहाँ से वो पीस बजा दिया,
1: अरे गजब,
0: तो ऐसे मुड़ के देखा, मैंने वो पूछते बजाई कौन बजाया, बोले वो लड़का, फिर से बोले बजाने के लिए, तो मैंने फिर से बजा दिया, तो उन्होंने को बोलता सबको बोले ऐसा बजाने के लिए,
1: अरे बाप रे
0: जैसा उत्तम बजा रहा है,
1: गजब,
0: यूं जी मैं बैठा था 2nd या 3rd रो में, 2nd डे सबको ऑर्डर हुआ कि सेंटर का जो पहला बीच की कुर्सी है वो उत्तम की होगी,
1: ओ
0: दादा ने मुझे प्रमोट कर दिया,
1: वाह
0: मैं 3rd रो से 1st रो में आ गया,
1: वाह वाह वाह, एक महान संगीतकार थे वो, अपनी धुन के पक्के,
0: बहुत जबरदस्त,
1: कुछ और घटना याद आता,
0: और एक टाइम ऐसा आया कि जब बासु मुरारी ने छोड़ दिया था
1: जी,
0: तो यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊंगा जो आमतौर पे कोई नहीं करता बट मेरे से होती चली गई,
1: अच्छा
0: क्यों हुई मुझे नहीं पता, बट मेरे से ये चीज होती चली गई, जो कोई नहीं करेगा, किसी ने की नहीं होगी और आगे भी कोई नहीं करेगा, जो ये मेरे से होती चली गई, मैंने नहीं किया, होती चली गई।
1: जी
0: वर्मा साहब ने मुझे बुलाया काम के लिए, अग्रीमेंट के लिए।
1: अच्छा।
0: हाँ, कि मेरे साथ काम करो। तो मैं गया, बैठा, उत्तम मासूम वो तो छोड़ के चला गया। मैंने कहा दादा वो तो पता चला, वो तो वहां बैठे हैं मद्रास में, तो हमको काम करना है इसका गोल्डी का, बहुत इमीडिएटली काम करना है, तुम करो। मैं बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, क्या क्या सोच रहे हो? मैंने कहा दादा आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम आपको ना बोलता है? मैंने कहा दादा आपको ना नहीं बोल रहा। फिर मैं दादा मेरा एक प्रिंसिपल लिखा, जो जिसके अंडर में मैंने काम किया हो वो कुर्सी में कभी नहीं लेता। मैंने कहा आपके बात बहुत बजाया है, बासु मेरी काम कर रहे थे, अब आप उनकी कुर्सी मुझे दे रहे हो। मैं कहा दादा नहीं कर पाऊंगा। You must, can you believe it? वो आदमी उठा, दादा उठे और मेरे कंधे पे एक हाथ रखा।
1: जी
0: एक शाबाशी का एक हाथ रखना होता है, एक फील होती है उसमें।
1: जी जी
0: खूब बालो खूब बालो
1: खूब बालो
0: खूब बालो। मैं चला गया।
1: आपने किसी म्यूजिशियन की जगह नहीं ली? लेकिन
0: मैंने किसी अरिंदर की जगह नहीं ली।
1: जी
0: मेरे को सबका ऑफर आया।
1: जी
0: प्रेम जी का ऑफर आया, पप्पी लेने का ऑफर आया, अनु मलिक मेरे पीछे, सिंबलाइजेशन का ऑफर आया, आरडी बर्मन का बाद में जब बसुदा चले गए तो मुझे ऑफर आया, कभी मैंने कहा। बबन जी का ऑफर आया मुझे।
1: जी जी
0: मैंने कभी नहीं लिया।
1: सिर्फ इसलिए कि आपको किसी दूसरे
0: उनके अंडर में, उनके अंडर में काम कर चुका हूँ, मैं अभी कैसे जाऊँ?
1: जी
0: म्यूजिशियन चले जाऊंगा, म्यूजिशियन ठीक है बट ऐसे

0: मंदिरों में नहीं ले, मैंने आज तक किसी की जगह नहीं ली।
1: क्या बात है,
0: कभी नहीं।
1: लेकिन म्यूजिशियन आप बजाते रहे? दादा के लिए भी बजाते?
0: हाँ हाँ दादा के लिए। लेकिन बाद में फिर वो ग्रुप पूरा चेंज हो गया था, फिर वो अनिल अरुण आ गए थे, तो फिर वो ग्रुप फिर जा ही नहीं सके, बजा ही नहीं सके, उनके हैंड में तो बिल्कुल नहीं बजा सके।

0: भी जरूरी है।
1: देखिए जी, मैंने तो सब क्या बजाया है, कोई ऐसा संगीतकार नहीं था 1962 के बाद,
0: जी
1: चाहे वो श्री रामचंद्र साहब हो, चित्रगुप्त जी हो।
0: चित्रगुप्त जी क्या अभी बजाया?
1: हाँ, बहुत
0: और अन्ना क्या अभी बजाया?
1: अन्ना क्या बजाया? अन्ना क्या तो एक किस्सा है, बहुत संगीतमय किस्सा है वो
0: बताइए।
1: वो किस्सा जरूरी है आज के लोगों के लिए, वो किस्सा सुनना बहुत जरूरी है। एक तो क्या, अन्ना बहुत स्ट्रिक्ट थे, अगर 70-80 म्यूजिशियन बैठा हुआ है और अन्ना की एंट्री हो गई तो सब सैलेड हो गए।
0: अच्छा,
1: हाँ, फिर आप अगर एक सुई भी फेंकोगे तो उसकी भी आवाज आएगी, इतना डिसिप्लिन था। और अन्ना का क्या था कि अन्ना ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग हम उसके मुलाजिम है, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग हम उनके म्यूजिशियन है, रिकॉर्डिंग के बाद वो हमारे दोस्त है।
0: वाह वाह वाह, पूरा मूड बदल जाएगा।
1: ये उनका फर्क था। और रिकॉर्डिंग के बाद यही वही अन्ना है कि आपको सोच भी नहीं सकते।
0: जी
1: तो हम लोग रिकॉर्डिंग बजा रहे थे
0: जी,
1: और अच्छा गाना, मुझे गाना याद नहीं है, अच्छा गाना था, रिहर्सल रिहर्सल किया, गाना रिहर्सल हो गई, रफी साहब आए, रफी साहब ने रिहर्सल किया, अब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो अंदर से शर्मा जी की आवाज आई, अन्ना की आवाज आई, जॉनी चलो टेक शुरू करते हैं, जॉनी गुम्स उनके असिस्टेंट थे, वो कह सर 1-2 दिया, उन्होंने म्यूजिक शुरू हुआ, इंट्रोडक्शन शुरू हुआ, पकड़ा गया, म्यूजिक बन गया, अंतरा शुरू हुआ, अंतरा चल रहा है, अंतर के बाद जहां क्रॉस आया
0: जी,
1: क्रॉस शुरू हुआ और अंदर से कट हुआ,
0: अरे अरे,
1: आवाज आई कट कट, कुछ पता नहीं क्या है, क्यों कट हुआ, एक टेक कट हो गई, सेम जगह में दूसरी टेक कट हुई,
0: क्रॉस भी,
1: क्रॉस भी कट हुई, तो अंदर से आवाज आई। और उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे जब अंदर से बोलते थे तो म्यूजिशियन भी सुना करते थे और सिंगर भी सुना करते थे,
0: जी,
1: क्योंकि सिस्टम ऐसा था। अभी हम सब शांत 70-80 म्यूजिशियन शांत बैठा हुआ है, हुआ क्या है, अभी अन्ना बोल रहे हैं, रफी साहब आप मोहम्मद रफी हो, आप सबके मोहम्मद रफी हो, आपको कौन नहीं जानता, आपको कौन नहीं सुनता, लेकिन क्या है, ये गाना श्री रामचंद्र का है, अगर आप श्री रामचंद्र को नहीं गाओगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा ये श्री रामचंद्र का गाना है। चुप रफी साहब, आप जो एक क्रॉस गा रहे हो ना, ये शंकर जगेशन की जगह है, मेरी जगह ये है,
0: गजब,
1: उन्होंने अपनी जगह गा के सुनाई, मेरी जगह ये है, ये श्री रामचंद्र की जगह है, वो शंकर जगेशन की जगह है, और आपको श्री रामचंद्र की जगह गाना है। रफी साहब सॉरी सॉरी अन्ना, सॉरी अन्ना, सॉरी अन्ना, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात,
0: फिर से शुरू हुआ,
1: शुरुआत खत्म हो गया।
0: वाह, इसलिए ये बार बार अड़चन आ रही थी।
1: ओके हो गया, ये छोटी सी जगह थी, वो समझ में किसी की जगह है, ये मेरी जगह है।
0: दादा ही आते
1: नहीं गाना वही तो प्रॉब्लम ये है ना, उस टाइम इतना काम करते थे, दोपहर को अलग, जैसे अभी यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा इंटरव्यू, चौथा इंटरव्यू, कहाँ याद नहीं, क्या क्या बोला,
0: जी जी जी,
1: ऐसी हमारी हालत थी
0: जी।
1: सुबह मदन साहब का बजा रहे हैं, दोपहर को श्री रामचंद्र का बजा रहे हैं, रात को जिंगल कर रहे हैं, सुबह शाम में फिर जिंगल कर रहे हैं, फिर शंकर जी का बजा रहे हैं, तो ये हालत
0: लगातार भागदौड़ होती थी,
1: लगातार भाग।
0: उत्तम जी, बहुत भागदौड़ चल रही थी, अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ बजा रहे थे, फेलो म्यूजिशियंस के साथ किस तरह के रिश्ते थे, जैसे केसी दादा से, बजी दादा से, मनोहरी दादा से,
1: ये सब लोग जी। ये तो ऐसा था ना, ये आप सोचिए कि जब मेरी शादी हुई तो मैं शायद 7 या 8 घंटे या 6 घंटे वाइफ के साथ पास रहते थे घर में, बाकी तो सब इनके साथ ही रहता था
0: जी।
1: तो केसी जी, गोपी जी, मारोली जी, और उसके बाद भज्जी, ये सब लोग तो मतलब आप सोचो 16-16 घंटे हम साथ में थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा वक्त इन लोगों के साथ भी,
1: ज्यादा गुजरी जो लाइफ है वो इनके साथ ही गुजरी है।
0: तो आपके सबसे पक्के दोस्तों में से कौन थे इनमें?
1: पक्के दोस्तों में भज्जी था।
0: अच्छा,
1: भज्जी एक वकील थे, म्यूजिशियन थे,
0: हाँ।
1: वो भी गुजर गया अभी, भज्जी वकील, गोपी जी,
0: भूपिंदर सिंह जी,
1: हाँ,
0: जो बहुत बड़े गायक भी थे और गिटारिस्ट थे,
1: और केसी जी,
0: जी,
1: ये हम लोग काफी अच्छा ग्रुप था, रात को साथ में बैठना
0: जी,
1: और मैंने सबको छोड़ना क्योंकि मैं नहीं पीता था
0: जी,
1: लेकिन ड्राइवर इनका मैं था, गाड़ी भी मेरी, ड्राइवर भी मैं, और छोड़ना भी इनको
0: पार्टियां वो लोग करेंगे,
1: पार्टियां वो लोग करेंगे, क्योंकि वो दोस्त थे, लेकिन छोड़ूंगा सबको मैं घर में।
0: इन सब में सबसे बदमाश कौन थे?
1: बदमाश तो सही थे सारे बदमाश थे
0: जी,
1: म्यूजिशियन जो है ना
0: जी,
1: एक्चुअली बदमाश होता है।
0: अच्छा,
1: हाँ, क्योंकि
0: आप आप ही भी थी बदमाशियां?
1: नहीं नहीं हमारी हमारी बदमाशी भी क्या म्यूजिक में निकलती थी।
0: अच्छा,
1: म्यूजिशियन जो है वो स्मार्ट होता है
0: जी,
1: क्योंकि उसको जब प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो बहुत माइन्यूट काम करना पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: एक एक सुर को पकड़ना और सुर में लाना और सुर में बजाना, ये एक आत्माई ढांचा है कि जब तक अगर आपके पास आत्मा नहीं है तो इलाहाबाद साहब ने बहुत बड़ी बात कही है कि म्यूजिशियंस आर बोर्न नॉट मेड।
0: वाह वाह वाह, पैदा होते हैं बनाए नहीं जा सकते। इलाहाबाद का जिक्र निकल गया, मुझे ये पता है कि आपने सिर्फ मुंबई के फिल्म जगत में ही काम नहीं किया बल्कि आपने साउथ में भी बहुत सारा काम किया।
1: जी, मैंने राजा मुझे लेके गए साउथ में अपनी फिल्म के लिए
0: जी,
1: और मैंने राजा साहब के कुछ 600 फिल्में का गाना मिक्सिंग मैंने की है।
0: 600 फिल्में तो जीवन भर का काम होता है ये तो।
1: हाँ, बट वो तो 35 फिल्में एक साल में करते थे ऐसा मुझे एक्टर पैदा नहीं होगा।
0: तो आपने बहुत वक्त मद्रास में भी बिताया।
1: मेरा एक पांव मद्रास में एक पांव बॉम्बे में।
0: तो वहां आप बतौर अरेंजर होते थे?
1: जैसे अभी मैंने बताया मिक्सिंग, मैं मिक्सिंग करता था और कभी कभी उनकी बैंड जो होता तो कंडक्ट करता था, कभी कोई सोलो होता तो सोलो भी बजाता था।
0: वाह,
1: और हम साथ में खाना खाते थे, साथ में चलते थे।
0: लैंग्वेज की प्रॉब्लम?
1: कुछ नहीं, म्यूजिकल लैंग्वेज।
0: क्या बात है, यही वजह है कि म्यूजिक में बहुत लेयर्स होती है, बहुत इंट्रिकेट काम होता है।
1: बहुत।
0: तो कुछ यादें बताइए।
1: मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है और किसी को बुरा लगना नहीं चाहिए, किसी भी संगीतकार को बुरा नहीं लगना चाहिए, उनसे बड़ा मुझे एक्टर कोई नहीं है।
0: क्या बात है,
1: इसलिए हर आदमी अपनी अपनी जगह है
0: जी,
1: बट ही इज द मैन हू नोज अबाउट म्यूजिक फ्रॉम ए टू जेड।
0: वाह,
1: लिखना खुद, पढ़ना खुद, कंपोज खुद करना, एक एक म्यूजिशियंस को क्या बजवाना है ये ही नोज।
0: वाह,
1: तो ये मोस्ट लर्नेड, हमारे यहाँ के जो संगीतकार थे बहुत बड़े बड़े संगीतकार, उनका कोई जगह ही नहीं, जैसे मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, बर्मन साहब, आर डी बर्मन, श्री रामचंद्र, संजय जय किशन, इनको चाहिए एक सहारा लिखने वाला, एक म्यूजिशियन लिखने वाला चाहिए, एक ऑर्केस्ट्रेटर चाहिए जो ओब्लिगेटो बनाए, जो कॉर्ड डाले
0: जी,
1: वहां पे अरेंजर की जगह है
0: जी।
1: जैसे मैंने किया, जैसे मैंने अरेंजमेंट किए तो मेरी एक जगह थी वहां पे।
0: बिल्कुल,
1: बट इलाहाबाद की वो किसी की जगह नहीं है, सारा काम खुद करते, इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा डायरेक्टर है।
0: क्या बात है,
1: वैसे मैं आज अगर मैं

0: वहां पे एरेंजर की जगह है,
1: जी
0: जैसे मैंने किया, जैसे मैंने अलाइनमेंट किए, तो मेरी एक जगह थी वहां पे,
1: बिल्कुल,
0: बट इलाहाबाद की वो किसी की जगह नहीं है।
1: वो सारा काम खुद
0: इलाहाबाद का
1: करेंगे।
0: सारा काम खुद करते, इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा रिजेक्टर है।
1: क्या बात है।
0: वैसे मैं आज अगर मैं

0: बताते हुए मुझे एक चीज याद आई मैयर साहब, उनसे जुड़ी भी यादें हैं, एकदम हम बीच में स्किप कर गए, बल्कि मुझे तो ये भी याद आता है कि जब उनकी वापसी का दौर था तब भी क्या कुछ काम किया आपने, निश्चय वगैरह जो फिल्म आई थी
1: तब मुझे बुलाया था
0: जी,
1: मेरी वही प्रॉब्लम थी
0: नहीं आपने मना कर दिया
1: ना, नहीं कर पाया आपके साथ। नहीं सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, यू आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड संगीतकार इन द इंडस्ट्री
0: जी,
1: स्पेशली फॉर म्यूजिशियंस, स्पेशली फॉर सिंगर्स ऑफ दोज डेज, रफी साहब, और क्योंकि हमको जो 6-6 महीने के बाद पैसे मिलते थे
0: जी,
1: वो सेट पे पैसे दिलाने वाले नैयर साहब।
0: अच्छा, फौरन ये काम किया ये पैसे
1: नहीं, उनका ये था कि भी ये पुरुषों को बोला कल रिकॉर्डिंग है तो इतने पैसे ले आना, ये मैंने किस्सा सुना हुआ है
0: जी,
1: ये पैसे ले आना, तो पुरुषों बोलता है इतने

0: उसे क्या जरूरत है, वो तो पैसे 3 महीने के बाद, अच्छा कब दोगे, 3 महीने, तो 3 महीने के बाद रिकॉर्डिंग करेंगे।
1: जी
0: तो नवीर साहब इज द म्यूजिकेटर जिन्होंने म्यूजिशियंस को सेट पे पैसा दिलाना और 500 से 5000 रुपए करना सिंगर का, ये रवैया साहब।
1: वाह,
0: रवि साहब 500 रुपए लेते, 5000 रुपए दिलवाया उनको और म्यूजिशियंस का पूरा। और किसी ने अगर सोलो अच्छा बजा, विनोद जी तो हमेशा उनसे किसी ने ऐसा सोलो बजा दिया तो जैसे रिकॉर्डिंग खत्म हुई जेब में 500 रुपए डाल दिए, 100 रुपए डाल दिए, जो भी डाल दिया,
1: जो अच्छा बजा उसका इनाम।
0: तो ये मेयर साहब थे।
1: वाह, अब बाद में मेयर साहब की शैली में तुषार भाटिया ने अंदाज अपना अपना में म्यूजिक दिया था।
0: हाँ, वो मैंने किया है।
1: वो आपने किया है?
0: हाँ,
1: उसके बारे में बताइए।
0: वो फिर मैंने दो एक दो या तीन गाने किए, उसके ज्यादा नहीं कर पाया, कोई टाइम नहीं था मेरे पास। और बहुत पूरा कॉपी म्यूजिक, पूरा पूरी मेयर साहब को लेके। और क्या होता है ना, देखिए मेयर साहब मेयर साहब है,
1: बिल्कुल
0: आप उनको कितना भी कॉपी कर लो, मेयर साहब है।
1: हाँ।
0: आप कॉपी हो,
1: बिल्कुल।
0: आप आज अगर आप किसी का काम कॉपी कर रहे हो तो यू आर ए कॉपी, यू आर नॉट ओरिजिनल, नो समथिंग ओरिजिनल।
1: बहुत सही बात करें।
0: आपको इतनी बड़ी फिल्म मिली है, बहुत बड़ी फिल्म थी वो, सलमान खान आमिर खान की फिल्म कर रहा है
1: जी।
0: अब क्या आपको डिफरेंट म्यूजिक दिया होता तो आज शायद कुछ अलग होता।
1: हम सब ये बात करते हैं कि मैयर की शैली के गाने।
0: हाँ, तो बात वही आ गई ना
1: जी,
0: हार्डली चले वो गाने, ज्यादा नहीं चले, क्योंकि जब ओरिजिनल सुनने तो फिर नहीं, सबको ओरिजिनल सुनते हैं ना।
1: गीतकारों से किस तरह के रिश्ते रहे जब आप म्यूजिशियन थे तब?
0: हाँ, मैंने सबके साथ एज ए अरेंजर, साहिब साहब के साथ, राजेंद्र कृष्ण जी के साथ, और उस टाइम के जो योगेश और इंदिवर जी, सबके साथ काम किया हुआ
1: जी। जी जी,
0: रिश्ते भी अच्छे थे, नमस्ते नाश्ते थे।
1: बख्शी साहब?
0: बख्शी साहब के साथ तो मैंने एज ए म्यूजिशियन काम नहीं किया, मुझे बख्शी साहब बिल्कुल पसंद नहीं थे।
1: मुझे पता है ये बात, तो मैंने सोचा कि इसका जिक्र आगे दिल तो पागल है कि टाइम करेंगे।
0: मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे वो बख्शी साहब, एक तो वो पान खाते रहना
1: और पीक दान,
0: वो पीक दान रखना और उसमें थूकते रहना, लेकिन दिल तो पागल है।
1: हाँ।
0: अभी हम गाने कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि दिल तो पागल कर रहा, मैं तो अपना टेलीफिल्म कर रहा था सूरज फिल्म्स की।
1: हाँ, ये बताया गया था कि ये टेलीफिल्म है।
0: टेलीफिल्म,
1: और कतई नहीं बताया गया कि स्टार कास्ट क्या है।
0: नहीं, वो टेलीफिल्म ही थी।
1: ओके,
0: गानों ने कन्वर्ट कर दिया दिल तो पागल है। उन्होंने जब गाने सुने तो उन्होंने कहा कि यार ये गाने तो फिल्म के लग रहे हैं। आदि ने सुना, भाभी जी ने सुना, मनमोहन सिंह जो कैमरामैन थे उन्होंने सुना, यश जी ने सुना, संजीव कोहली लड़के
1: जी
0: वही तो लेके गए मुझे।
1: अच्छा,
0: ये बहुत बड़ा जिक्र है,
1: इसको
0: इसको होल्ड रखते हैं,
1: इसको होल्ड रखते हैं। यहाँ सिर्फ एक झलक हमने सुना दी।
0: हाँ,
1: आपके जो म्यूजिक की यात्रा की बातें हो रही थी और उसमें हमने बहुत अलग अलग तमाम संगीतकारों को याद किया, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि चूंकि बहुत भागदौड़ थी तो एक दिन में सबसे ज्यादा कितने गाने आप करते थे?
0: देखिए जी, एज ए म्यूजिशियन जो है ना, वो संडे सुबह लगन साहब का बजाय, दोपहर को नौशाद साहब का बजाय, दो गाने।
1: वाह, दो लेजेंड लोगों के साथ काम हो गया आधे दिन में,
0: एक दिन में।
1: अभी तो एक शिफ्ट बची है।
0: नहीं, एक दो शिफ्टों में
1: जी,
0: सुबह एक शिफ्ट जो है वो मदन साहब के लिए।
1: अच्छा, सुबह की पूरी।
0: और दोपहर को 3 से 7 या 3 से 8 या 3 से 9 दूसरे डायरेक्टर के लिए।
1: जी जी,
0: ये हमारे उस टाइम पे लॉ था, यू कैन नॉट प्ले मोर देन दैट,
1: दो से ज्यादा नहीं,
0: दो से ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन साथ साथ में जिंगल चलते थे
1: जी,
0: एड फिल्म के गाने चलते थे, तो वो सुबह हम 7 बजे करते थे और उसके बाद ये रात को 9 बजे बैकग्राउंड बदल के 9 बजे के बाद फिर जिंगल के, तो रात को 12-12 एक एक बजे काम करते थे।
1: और जिंगल में भी इतना सारा म्यूजिक होता था?
0: मैं जिंगल ज्यादा नहीं, 7-8 म्यूजिशियन, 10 म्यूजिशियन बहुत हुए, लेकिन अभी अरेंजर मैंने दिन में 7-7 गाने किए हुए।
1: बाप रे बाप, सब अलग अलग लोगों के लिए।
0: हाँ, मतलब समझिए किसी का, जैसे आप आज कोई भी एल्बम उठा लो, चाहे वो पंकज उदास हो, तलत अजीज हो, जगजीत हो, भूपेंद्र हो, सबके जो पहले फर्स्ट एल्बम है ना, वो मैंने किया हुआ है।
1: अरे बाप रे, तो द लेटेस्ट भी आपने किया जगजीत
0: की? जगजीत की जो फिल्में, जो हिट गाने हैं, वो सारे मेरे किए हुए हैं।
1: बिल्कुल,
0: उसके पहले ओपनिंग के जो गाने हैं, वो सब मेरे किए हुए हैं। तलत के, आपके गुलाम अली का एक एल्बम आया था मिराज़े गज़ल, वो मेरी की हुई है सारी।
1: आशा भोसले और गुलाम,
0: हाँ, वो सारी मेरी की हुई है।
1: अरे क्या बात है, तो मिराज़े गज़ल में से एक गजल सुनी जाए फिर?
0: जी हाँ, जरूर सुनिए, उसमें वॉइस ओवर बहुत है।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह।
2: आप सुन लीजिए उसको।
1: म्यूजिक अरेंजमेंट की बात बहुत हो रही है और आप बता रहे हैं कि आपने कई बार एक एक दिन में सात सात गाने अरेंज किए। हमारे श्रोताओं में से बहुत सारे श्रोता ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता कि ये म्यूजिक अरेंजमेंट क्या चीज होता
2: क्या होता है, यस
1: है ना,
2: यस।
1: तो ये आप बताएं कि असल में गाना बनता किस तरह से है और उसमें म्यूजिक अरेंजर का काम म्यूजिक डायरेक्टर से कितना अलग है।
0: देखिए यहाँ पे कंडक्टर का चार्ज तो मुझे सभी चौदह ने दिया
1: जी,
0: लेकिन म्यूजिक अरेंजमेंट का चार्ज जो है वो मुझे दिया शंकर शंभू।
1: शंकर शंभू खपाल से
0: जो कवाल थे, मुझे मैसेज आया कि आओ बुलाया, तो मैं गया मिलने के लिए। मैं जी हम एक पंजाबी फिल्म कर रहे हैं और बड़ा तुम अरेंजमेंट करो। मैंने कहा तुम मैंने कभी अरेंजमेंट किया ही नहीं। बोले नहीं करो, दे आर दी पर्सन हु मेड मी अरेंजर।
1: कैसा, ये किस साल की बात होगी?
0: 60s की होगी
1: जी जी।
0: हाँ 60s, 65 मोस्टली, मोस्टली 65
1: जी,
0: क्योंकि 65 से मैंने अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया था पहला उनका। उसके बाद में मैं जैसे मैंने अरेंजमेंट करना शुरू किया तो जितने भी छोटे म्यूजिक थे जैसे इकबाल कुरैशी, छोटा इकबाल, मिलन वाले, ऐसे काफी लोग छोटे छोटे म्यूजिक थे, सबने मुझे बुलाना शुरू कर दिया
1: अरेंजर के तौर पर।
0: और यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत किस्सा है कि मुझे मिलते थे 30 रुपए में दो गानों का अरेंजमेंट करना, 30 रुपए में
1: जी
0: दो गानों को अरेंजमेंट करना, तो दो गाने सुबह दो गाने शाम, तो दिन के 60 रुपए बहुत बड़ी बात होती। लेकिन हुआ क्या, मैं इतना बिजी हो गया तो जो म्यूजिशियन आया बजाने के लिए वो 100 रुपए दो गाने का ले, कोई 80 ले, कोई 100 ले, कोई 70 ले, कोई 75 ले, और मुझे मिले 30 रुपए।
1: अरे अरे,
0: तो एक दिन मैं एक संगीतकार के यहाँ पहुंच गया सुबह 7 बजे। 7 बजे नॉक किया मैंने, अरे उत्तम तुम कहाँ से आ गए सुबह सुबह? जी हाँ, अच्छा आ जाओ चाय पियो के, मैं आज पी लेंगे। मेरे पास आपसे बात करनी थी। बोलो बोलो। मैंने कहा आप मुझे 30 रुपये दो गानों के देते हैं, मैं म्यूजिक बनाता हूँ, कंडक्टिंग करता हूँ, सब करता हूँ, और जो हमारे म्यूजिशियन आते हैं वो कोई 100 रुपये ले जाता है, कोई 70 रुपये ले जाता है, कोई ऐसे, तो मेरा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अच्छा ठीक है, कल बताता हूँ। वो कल कभी नहीं आई, उन्होंने मुझे निकाल ही दिया। पैसे मांग लिए, जाओ आउट। अब बताओ, आपको जब नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी पैसा मांगने की।
1: जी जी।
0: फिर उसके बाद जो मिलता रहा मैं करता रहा, फिर मेरा नाम धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, फिर अपने आप ही लगाए मेरे पैसे बढ़ाने शुरू किए।
1: और म्यूजिक अरेंजमेंट में बहुत सारा काम शामिल,
0: म्यूजिक अरेंजमेंट में मैंने जितना जिंदगी भर काम किया
1: जी,
0: मैंने ये काम किया कि एक तो आपने मुझे गाना दे दिया, ठीक है, आपने एक मेलोडी दे दी मुझे, अब उस मेलोडी के हारमोनी, उस मेलोडी के बीच के म्यूजिक, चाहे वो ओपनिंग म्यूजिक हो, बीच का म्यूजिक हो, वो सारा मैंने बनाया
1: जी।
0: अब पूरे म्यूजिशियंस को रिहर्सल कराई, अब मैंने रिकॉर्डिंग भी करवाई, क्योंकि साउंड मेरा अपना बैलेंस नहीं होता था, आई नेवर यूज्ड टू ट्रस्ट एनीबॉडी, मैं मेरा बैलेंस मैं करूंगा।
1: अच्छा, तो पैनल पर भी आप ही बैठेंगे?
0: हाँ, मेरे साथ रिकॉर्डिंग के साथ मैं बैठता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए
1: जी।
0: तो मैंने जिंदगी में जो भी काम किया ना वो वन मैन शो किया, मुझे काम था गाना दे दो,
1: मतलब म्यूजिक डायरेक्टर ने केवल ट्यून बनाई,
0: ट्यून बनाई, और उसमें भी बहुत सारी चीज मैंने करेक्शन की है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि कई ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर आते हैं जिनको ताल का ही पता नहीं होता था, वो लेके आ जाते थे ये सब ऐसा गाना है, उसको ताल में ठीक करना, उसको ठीक करना, आर्टिस्टों को सिखाना, आशा जी होती थी, लता जी होती थी, मुझे ही पूछते थे कि गाना उत्तम इसको कैसे करना है, इसको क्या क्या जो भी करना है। तो मेरा वन मैन शो रहा है, हम आपके हैं कौन,
1: क्या बात है,
0: हम आपके हैं कौन, और मैंने पैर किया जो है।
1: ये नहीं बताना जरूरी कि ये फिल्में वो है जिनमें म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण थे, लेकिन अरेंजर आप थे।
0: अरेंजर मैं था, बैकग्राउंड म्यूजिक सारा मेरा है, म्यूजिक सारा मेरा है, अरेंजमेंट पूरा मेरा है, सब कुछ, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरी है पूरी, मेरे बिना कुछ वहाँ हिलता नहीं था
1: जी।
0: तो इसलिए मैंने ऐसे अरेंजर जो काम किया है वो राइट फ्रॉम टिल रिलीज मैंने काम किया है, तो ये ऐसे अरेंजर जो मेरी जो पोस्ट है वो मैंने आपको बताई है
1: जी जी।
0: बाकी कई पुराने संगीतकारों में बहुत खास बात ये थी कि वो म्यूजिक अपना खुद बनाते थे,
1: फर्स्ट म्यूजिक से
0: बरम साहब म्यूजिक खुद मेलोडी खुद बना लेते थे,
1: जी
0: नौशाद साहब हो गए, संगीत ये सब लोग अपना म्यूजिक बना देते थे, तो अरेंजर खाली

0: अच्छा,
1: लेकिन दिखता था उसको थोड़ा सजाना वजाना, कॉर्ड डालना, वायलिन बजाएगा, चेलो बजाएगा या क्या बजाएगा, वो सब करते थे। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने वन मैन शो शुरू किया।
0: तो आप तय करते थे कि यहाँ इतने वायलिन होंगे, मैंडोलिन आएगा कि गिटार आएगा,
1: क्योंकि बहुत सारा मेरा होता था ना
0: जी, तो पीसेस भी कैसे बजाए जाएंगे, उनका चलन क्या होगा, वो सब जी।
1: और वो पीस मेरा है, मैंने उसको कंपोज किया, बच गया गलती से, मैंने कंपोज नहीं किया
0: जी जी।
1: तो ऐसे जितने भी म्यूजिक है, कंपोज पीसेस है, मैंने कह के उठा लीजिए आप, हम आपका कौन उठा लीजिए, मेरी अपनी म्यूजिक उठा लीजिए, दिल तो बादल से, या आप पेंटर बाबू चले जाइए,
0: जी जी
1: उत्तम जगदीश थे,
0: जी जी।
1: तो सारे म्यूजिक जो है, हर चीज इंटरलूड वगैरह सब मेरा बना हुआ।
0: अब जैसे हम मैंने प्यार किया की बात करते हैं, अब दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, उससे पहले का जो म्यूजिक है, जो फिल्म जिस तरह से चलती है, वो तो वो सारा आपका तैयार किया,
1: सारा मेरा बनाया हुआ है
0: जी।
1: और उस टाइम पे वो पीस आया था तारे तत्ते तारे तत्ते तारे, इससे पहले ये फ्लूट कभी नहीं बजी थी।
0: हाँ वही बात है।
1: तो उस टाइम पे लोगों ने कहा कि अरे फ्लूट ऐसे भी बज सकती है,
0: क्या बात है,
1: और बहुत लोगों ने यूज किया वो
0: तालाब की तरह है प्रॉपरली जो आता है
1: बिल्कुल।

जानो उनकी यादों की। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का दूसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटिल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

सभी सुनने वालों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। प्यार सच्चा है गर तो महकेगा चंदन की तरह, वरना सारी रात तुम्हारी आंखों में गुजर जाएगी। वो लम्हात ही कुछ ऐसे थे कि कुछ कह न सके हम, तकदीर के हाथों लुटते रहे, अश्क आंखों से ही बस बहते रहे, हम बुनते रहे ख्वाबों को अक्सर और एक सिरे पे तन्हा रहे हम, दूजा सिरा ढूंढ न पाए हम।

लोगों ने बहुत समझाया हमको, ये इश्क नहीं आसा, तकदीर में जो होगा वो मिलेगा ही तुझे एक दिन, मगर हम जान की बाजी लगा बैठे, तमन्ना उसे पाने की, उसे अपना बनाने की, जो कसम खा बैठे।

0: ख्यालों में उसी के हम करवटें बदलते रहे, वो नहीं थे पास मगर उन्हें तो याद करते रहे। चाहत भरे दो दिलों की दास्ता चुपके चुपके असर करने लगी, रह रहकर धड़कनों में बस एक ही पुकार उठती रही।
1: चाहत

अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। वो शाम आई, वो रात आई, तकदीर इतनी बेरहम भी न थी। ये हमने उस रोज जाना, आसमां पे चांद अपने पूरे शबाब पर था। वो मेरे सामने चांदनी बनकर इस तरह आई। उस रात की तन्हाई में दिल मचल उठा और मोहब्बत भरे तराने ओठों पे सज गए।

जब सामने आ ही गए वो, तकदीर मेरी हंसी पड़ी। क्या खूब दीवाने होते हैं, नजरों में मोहब्बत के फूल खिल उठते हैं, सांसें महक उठती हैं, फिजाओं में रंग बिखर गए और आपस में शिकायतें भी तो यही करने लगे।

क्या कहें, राज दिल दीवानों से छुपाया न गया। मोहब्बत की आग ही कुछ ऐसी होती है कि तकदीर भी पल में बदल जाती है। प्यार के आगे वो मुस्कुरा के झुक जाती है। प्यार परवान चढ़ता है जब दो दिलों की बातें आंखों ही आंखों में होने लग जाती है।

मौसम कितना भी सुहाना हो या हो रातें सुहानी, बस वो तुम्हारी यादें, वो प्यार भरी बातें, वो तुम्हारी जुल्फों का लहराना मुझे मेरी नींदों से जुदा कर जाता है। क्या कहूँ।

हर गीत में मोहब्बत भरे तराने आपके दिलों के बेहद करीब छोड़कर जाती हूँ, शायद ख्वाबों में मुलाकात हो जाए। तो मंजरी वर्मा का नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह मोहन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुनहरी धड़कन। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: प्रस्तुति कार्यक्रम तराने नए पुराने
1: तराने

तरानी नए पुराने इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ मंजू द्विवेदी। कार्यक्रम का पहला गाना वीर जारा, इस फिल्म से उदित नारायण की आवाज, जावेद अख्तर की बोल है, संगीत है मदन मोहन का।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है
1: तराने नए पुराने। इस कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये जब तक है जान, इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजों में, बोल गुलजार के ही संगीत है, ए आर रहमान का।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है, वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहला नोवेल लेख छपा था कहानी की काया और फिल्म की छाया, उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। नए पुराने कार्यक्रम का ये अगला गाना लम्हे फिल्म से लता मंगेशकर और इला अरुण की आवाज़ें गीतकार आनंद।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है
1: देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से कार्यक्रम जारी है तराने नए पुराने। अगला गाना सिलसिला फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल, संगीत है शिव हरी का।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में साहिल उद्यानवी का लिखा हुआ गाना, खयाम का संगीत, फिल्म का नाम है त्रिशूल।

नसीमांग लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने गपा कारवन फिल्म ने कितना प्यार वादा है यह गीत को खना सोना मनाहा दौ नसीमाना किशोर कुमार ने गपा गीत को कमातंग सकाएंगा गीत होंगे ओ मेरी सरमेली यान सरमेली फिल्म ने गीत होगा।

0: करेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा। करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ठहरते रहे तो पंचम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलेज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित हवलदार दयाराम की शौर्य गाथा। इस बीच ये खबर भी मिली कि तीसरी पैरा बटालियन राजपूत रेजिमेंट की एक और कंपनी को टीम धर रवाना कर दिया गया है। देश की सरहद की सुरक्षा के मद्देनजर टीम धर की ये चौकी साथियों बेहद ही खास थी, क्योंकि यहाँ से दुश्मनों की गतिविधियों को देखा और परखा जा सकता था, हमलों का जवाब दिया जा सकता था और जम्मू कश्मीर की सरहद को सुरक्षित भी किया जा सकता था। भारी शेलिंग के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना हवलदार दयाराम ने युद्ध के मोर्चे को संभाला। सरहद पार से उठे जंग के इन शोलों की लपट इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर और सरहदी गांवों में भी गोलियों की गड़गड़ाहट शत्रु की मौजूदगी का एहसास कराती थी। एक पल को खामोशी तो दूसरे ही पल आसमान में घुलता बारूद जम्मू कश्मीर की फिजाओं में जहर घोलता रहा। मौसमी रंग में नहाए चनार के दरख्त बेरंग नजर आते थे, जिंदगी सिसकियों की सांस भरती रही। भला उन नरगिसी फूलों उन सफेद झीलों उन प्रेम के पंछियों और पुरसकून वादियों को नफरतों से क्या लेना।

स्पेन भर में अब तक अपने सहायक सैनिकों के साथ पोजीशन ले चुके हवलदार दयाराम ने अपनी सूझबूझ और फुर्ती से युद्ध करते हुए दुश्मन सैनिकों को पीछे धकेल दिया। लेकिन इससे पहले कि दयाराम और उनके साथी संभल पाते, दुश्मनों का एक और जत्था आगे बढ़ा और एक बार फिर बारूद के उठते शोरों में सब कुछ धुआं धुआं सा नजर आने लगा। ये मुठभेड़ घंटों चलती रही। भारतीय सेना की इस चौकी में कई सैनिक घायल हुए, जिन्हें तत्काल बाकी सैनिकों ने कवर देते हुए सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। न सिर्फ एक या दो बार बल्कि लगातार 5 बार इस मुठभेड़ के दौरान दुश्मन सैनिकों ने हवलदार दयाराम पर हमले किए और इन हमलों को वो लगातार विफल भी करते रहे। काफी सैनिक इस मोर्चे पर घायल हुए, फिर भी मोर्चे पर दयाराम डटे रहे और हथगोले फेंक कर दुश्मनों के दांत खट्टे करते रहे।

बीच उनकी पोस्ट पर लाइट मशीन गन, जिसे एलएमजी या ब्रेन गन भी कहते हैं, इसे चलाने वाला सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ। ये देखकर दुश्मनों के हौसले बढ़े और उन्हें लगा कि मंजिल अब तो करीब है। लेकिन इसी बीच घायल अवस्था में भी पूरी फुर्ती से हवलदार दयाराम ने एलएमजी को संभालते हुए दुश्मनों पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। उनके चंद बचे सैनिकों ने जब उन्हें इस तरह दुश्मनों पर टूटते देखा तो वो भी पूरी ताकत से हमलावर होते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े और दुश्मनों के खेमे में खलबली मचा दी। अफरा तफरी के इस माहौल में अब तक 24 दुश्मन सैनिकों को हवलदार दयाराम ने वहीं मार गिराया और बाकी बचे पोस्ट छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन कोई 300 सैनिक अब भी दबे पांव आगे बढ़े। लहू से लथपथ दयाराम ने इनमें से 2 को तो मौत की नींद सुला दिया, लेकिन तीसरा अब भी आगे बढ़ता रहा। इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, दयाराम ने बड़ी फुर्ती से एक हद गोला उसकी तरफ फेंका और उसके भी परखच्चे उड़ गए। साथियों, हवलदार दयाराम ने न सिर्फ टेंधर की इस बेहद महत्वपूर्ण चौकी को बचाया, बल्कि तमाम असलाहे और ब्रेन गन को भी शत्रु के हाथों में जाने से बचाया। साथ ही चौकी पर 4 और घायल पड़े भारतीय सैनिकों की जान को भी बचाया और टेंधर की इस मुहिम में फतह हासिल की। भारतीय सेना की एक और जीत का इतिहास सुनहरे पन्नों में दर्ज कर दिया गया। ये फतह भारतीय सेना की कामयाब मुहिम का एक ऐसा हिस्सा थी जो विपरीत परिस्थितियों में भी जंगी हवाओं के रुख को मोड़ने का ताब रखती है। जब सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर नजरें हों तो जीत का परचम लहराता ही लहराता है। हम एक बार फिर सलाम करते हैं हवलदार दया।

फौजी साथियों, आज के विशेष जमाना कार्यक्रम में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित हवलदार दयाराम की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं आप जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो मर जाए। गाते गाते आप इस दीवार से जाती है, जंप कर जाती है। मेरी गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, मैं भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़ी टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुति कार्यक्रम साज और आवाज। साज है बांसुरी और कलाकार है श्रीधर कैंकरे। सबसे पहले आपको भाभी की चूड़िया फिल्म के एक गाने की धुन सुनवाते हैं, उसके बाद ये गीत सुनवाएंगे।

श्रीधर केंकरे द्वारा बांसुरी पर बजाई की धुन अभी आपने सुनी। लीजिए अब सुनिए भाभी की चूड़िया फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में, नरेंद्र शर्मा के बोल, संगीत है सुधीर फड़के का।

0: جشن لجبهة ستر رفع جرفة إلى توبركو لجبهة فيبا أعلى رفع
1: साज और आवाज इस कार्यक्रम में बुड्ढी फिल्म के गाने की ये धुन सुनिए जिसे बांसुरी पर बजाया है श्रीधर के।

जी ये नकबा सन खम खोन खाएगा राजेंद्र सिंह जी सक्सा नकबा मंदे होगा जेनी बीमन खोन सीनियर ने उकम थोका वह सक्सा चाच इसको सोचेत बिल्सियो ओलंपिक को हॉकी खालानियो गोल्ड मेडल को मंगे पोंगा वह चाच इसको सोचेत किनी बिल्सियो वर्ल्ड कप को खालचेंग हा हाजल गनी सा बिल्सियो इंडिया मेंस जूनियर वर्ल्ड कप टाइटल खांग बाचांग ने छेगे पोंगा हा हाजल गनी के थाम बिल्सियो सीनियर एशिया कप टाइटल को बाचेगे पोंगा हा वह या गेगिनी खालसु सानियन कोच उंगेरे दला हा दालो राउंड क्लास हॉकी एकेडमी ने गता वान थांगी छांगा सापानी को मखांग छि रांगिंगा उनियन दकबा खामरांगना उखो मथेला वगताल गपा एस्ट्रो थारब्रांको सोंगादाम रांगोना रांगिंगा राजेंद्र जी ने निक्सम सोहानी ना मेन रंगथाला व सोंगादाम रंगो जेरंगन बिसारंग ना यन दकबा सिक्यो नानी रंग खोमिया व रंगोनी को बिसारंग को संदिया यन दकबा जोथन खानी बंगा खाल गपरंग ना इंडियन जूनियर आरो सीनियर ना बियाप को मन ना गता लक छकिंगा राजेंद्र सिंह जी ने उन खानी ना चिंगु को मथेल ना खरा आंगनी खासरा असोंगनी मंदिरंग आंगला को अनचिंग मकान मासिया बंगा नुक्रांगोन पिकल आरो मुरापा को अमला उनिको थारिया जेको नानचंग सालांतियान जखाला बंगा मंदिरंग सिनखारियो अमला जुस को जखाला चावन फ्रांस अनचिंगनि जंगि थांगानि सालांति तकनियो नांग छुमत गबांगा अनचिंगनि दलगपारंग अमलानि नामगनि खोस खांगोनि आगान बाइंगा रपेंगिंग या अपसन अमला अन दालो उत्तर प्रदेश नि प्रतापगारो बंगा जंगि थांगानि छोरांगो नेंगा प्रतापगार आरो अमलानि नांग्रम गुरकानि ब्लोंगिंग गछामुंगा कामे गे चागब्रां अमला खरुता बुसिरांगोनि गे ए छाबाइंगा अमला प्रतापगारना नमेल नक्सेंगपा बिमंखोरा बहा आरुयन मांबिनी तकबागपा गमेगे छागपरंगना आरु मेचकरंगना नमगपा जंगी थांगानी छोलरंगको अनसखाइंगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी निगता वा बियापो अमलाखो बादिंगे छागपरंग पंगा नमगुनिरंगको मानेंगा तालो रचासा यूनिट अमलाखो प्रतापगारो थारिये रांगेंगा आरुयनो मेचिक सेल्फ हेल्प ग्रुप रंगबा नकचकेंगा यन्ना कबगेसा ग्रुपारा देवकर खामासी सोंगनिवा वासोंगनि सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप गेसा अमला केंडिस मुरापा आरो जुसरांको थारिये फालेंगा ओडीओपी को जखाले बालिंग छिवालानि को दकानिचि वमंगनि मानगनिरां पाटुग्रकिंग हा अपसन दके बिडिया वाशिनि सेल्फ हेल्प ग्रुप जेन गे गपन सोंगनिवा वंग बयानो बखोराइंगा या सोंगनि मेचिक्रां अमला पिकलरां को डाइजेस्टिव पाउडर आरो गपन बोस्चुरां को थारिंगा या मेचिक्रां यारां को थारियानि मेशिन रंग को मानन बक्साना वामंग लोन फैसिलिटी रंग को बा मानेगा वामंग लोकल ट्रेड फेयर रंग बादंगना चोल को मानेगा आर वामंग नि माननानि रंग बाना मेन थांदोंगा खासारा सोंनि मानदेरां आंचिनि बियाप्रांग ना मेन आंथांथाङारि दुंथांगपाङा बानोबा नक्रों गिजाकपा बिथे को नुकना मानना बानोबा दुंथांगपा जातनि दाखपेवाल को आरो बानोबा दुंथांगे छाङा सापकपा को नुका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यान दुंथां मानसा यान खरा दोना नक्साम सोय जाखु देंग पाउंगा चिनि मुक्सोमानि आंचिनि दाकार कानि रंखो सोंगनोको आरो सोंनि नोकनि बाजार आंतिदाम रंगो मांगमांग बोनसि पाइगिजा वामांखो छोलो नाजाखु दियानि ओंगा या बोस्तुरां आरो छाङा सापानि रं आंचिनि दुंथां दुंथां बियाप रांगना सुखांचिना आरो आगोसा कमकनि बाजार आंथि रांगना बा यान आंथांथांनि आसोङो थारिख बा बोस्तुखो जाखालना दिदियानि बङा आरो यान आंचिनखो गोबथोमो फांसाक गिजा आंथां जाव छादेंना बा आंचिना नामगोपा छलङा आंचिंग फेस्टिवल को मानिंगन आंचिंग अंथांग जाखथांची थारि बा बोस्तु को जाखालना गुवाल जाना खासरा आंनि आसोंनि मन्दिरा या सेप्टेम्बर जारा छारंगानि चुंगिजानि बा माल न्यूट्रिशनल खांगानि गताङा या पोसान मा बा छारंगानि नन खांगानि जाव दुंथां दुंथां सेक्टर आंनि को मन्दिरा आरो दोलरां या नामगपा खामना खाम खानियो नांग्रमे बा खरा थकेङा या बिसिय छारंगानि चुंगिजानि को बनातना गता बाङा नामगपा खामरां को आबाचेङा ताहा छत्तीसगढ़ आदोकारा हारगार मुंगागार गार मुंगा ओ चाखु देहा या खामची मंदिरों को ब्लॉक पा आरो दालरो को बदक चकनी गनांग पा मुंगा बा मोरिंगा को चानी रंगो दोन छपना गता दिदेंगा गुजरात आदोक पा मी चीरंग दंथांग दंथांग चानी रंगो थारिये सुसानी बंगी स्पर्धा को आबाचेंगा पहा या खामची दम नमग पा आरो अनसेंग पा बिसारंगी चानी रंगो दकतना दिदेंगा तालोना बा या सुसानियो लक्निना बा प्ले मंदिरों बाक्रमान हा महाराष्ट्र आदोकपा या छोलरांगना नम्बाते जाखु देंगा स्किल परंग आंगनवाडी खाम खागबरां आरो बिसांनि माफारां नबा यमग्रागतानि खामरांनि गता उंगेंगा मिजोरम आदोकबा मन्देरां पोसान बातिका बा आबा बागानरांखौ नम्बाते निरोख सान्दिना गता नांग्रम थकाहा यारा मिजो मन्देरांनि थ्लो मात याना बेवाल मंगनां छापकपा उंगा जेमा नान्थां थांनि नामगनिना सानसिगिजा गोपनांना दाखसाकानिखौ मोगसुङा यन नकबा खामरांगारा दुंथां मानसा मथेलानि ओङा आङा आंगनबाडी सेन्टारांनि या खामरांना बा कनगोपारांना आरो

0: नमस्कार, श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट धर्मेंद्र मणि राजेश। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है।
1: सिद्धार्थ, एशियाई खेलों में जारी रोमांच और खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के साथ खेल जगत की हर अहम हलचल पर है हमारी पहली नजर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।
0: जी हाँ, नजर डालते हेडलाइंस पर। एशियाई खेलों के आठवें दिन आज भारत ने 4 रजत सहित 7 पदक जीते।
1: एथलेटिक्स में एनसी सोजन ने महिला लॉन्ग जंप और सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक जीते। पारुल चौधरी ने 3000 मीटर स्टीपल चेज, पुरुष डेकाथलॉन में तेजस्वी शंकर और महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में सरिता भद्रा ने कांस्य पदक अपने नाम किए।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची, दक्षिण कोरिया से होगा मुकाबला।
1: बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल और परवीन हुड्डा ने क्वार्टर फाइनल जीतकर पदक पक्के किए।
0: समरकंद में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम को रजत और महिला टीम को कांस्य पदक मिला।
1: और क्रिकेट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत के सामने जीत के लिए 296 रन का लक्ष्य।
0: और श्रोताओं, खेल खबरों की शुरुआत करते हैं एशियाई खेलों से, जहां आज का दिन भारत के नाम रहा। एथलेटिक्स की अगर हम बात करें तो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीता।
2: एशियाई खेलों में आज एनसी सोजन ने महिलाओं की लॉन्ग जंप स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। उन्होंने कहा कि मुकाबला बेहद कठिन था, लेकिन देश के लिए रजत पदक जीत कर भी खुश हूँ। वे महज 2 सेंटीमीटर से स्वर्ण पदक से चूक गई। सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक जीता। उन्होंने 2.25 मीटर की जंप के साथ ये मेडल हासिल किया। वहीं महिलाओं के 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में पारुल चौधरी को कांस्य पदक मिला। उन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए 9:08.67 सेकंड में रेस पूरी की। पुरुष डिकैथलन स्पर्धा में तेजस्विन शंकर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने बेहद चुनौतीपूर्ण प्रतियोगिता की अंतिम स्पर्धा में 1500 मीटर दौड़ में जीत दर्ज करके ये पदक हासिल किया। उधर हरिता बद्रा ने महिलाओं के 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हरिता ने 23.20 सेकंड का समय निकालकर कांस्य पदक अपने नाम किया। हरिता ने अपने इस पदक के लिए कोच और परिवार का धन्यवाद दिया। भारत ने इस स्पर्धा में पिछली बार 2018 एशियन गेम्स में दूती चंद के कांस्य पदक के रूप में पदक जीता था। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
0: धर्मेंद्र, आप पूरे इवेंट पर नजर बनाए हुए थे एथलेटिक्स में, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं लॉन्ग जंप स्पर्धा से, जहां पर जिस तरीके से आज एनसी सोजन ने प्रदर्शन किया, क्या कुछ कहेंगे?
1: कमाल का प्रदर्शन, लाजवाब प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन की जितनी भी तारीफ की जाए सिद्धार्थ बेहद कम है। 5 जब वो जंप वो लगा चुकी थी तब वो लगातार आगे बनी हुई थी और लग रहा था कि गोल्ड मेडल हमारा पक्का हो चुका है, लेकिन वो छठा जंप जहां पर चीनी खिलाड़ी ने अपना सब कुछ झोंक दिया और सिर्फ 2 सेंटीमीटर के अंतर से वो स्वर्ण पदक हमारे हाथ से छीन लिया। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि ब्रॉन्ज मेडल पर भी हमारी तगड़ी दावेदारी थी, वहां पर भी चीनी खिलाड़ी अंतिम छलांग में हमारी खिलाड़ी से आगे निकल गई।
0: जी बिल्कुल धर्मेंद्र, तो हम एकदम क्लोज थे गोल्ड की और वो मायूसी, हालांकि रजत पदक मिला हमें, हमें खुशी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर इतना कम था, वो मायूसी हमने आपके चेहरे पर देखी। और जिस समय लाइव मैच चल रहा था हम सभी का ध्यान उस पर लगा हुआ था और ये लग रहा था कि आज कम से कम भारत एक गोल्ड तो जीतेगा ही।
1: जी बिल्कुल, उस समय तो ना उम्मीद की कोई बात थी ही नहीं। 6 जंप में से 5 जंप में आप लगातार आगे बने हुए हैं और इतना लाजवाब प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 सेंटीमीटर का फासला 5वें जंप तक था भारतीय खिलाड़ी के पक्ष में, लेकिन वो अंतिम जंप बहुत कमाल का चीन की खिलाड़ी ने भी लगाया। लेकिन जो भी हो, प्रदर्शन जो एनसी सोजन ने किया है वो कमाल का प्रदर्शन किया है और बहुत सारी उम्मीदें इस जंप के बाद हमें जगती हैं और अब तो ओलंपिक की भी उम्मीद हमें मेडल की दिख रही है।
0: बिल्कुल, और जैसा कि उन्होंने अपने जीतने के बाद भी एनसी सोजन ने कहा था कि मुकाबला बेहद कठिन था, लेकिन देश के लिए रजत पदक जीतकर मैं बहुत खुश हूं। और इसके बाद धर्मेंद्र, नजर डालते हैं सर्वेश कुशारे के प्रदर्शन पर, जिन्होंने 2.25 मीटर के जंप के साथ जो मेडल हासिल किया। इनका भी प्रदर्शन काफी बेहतरीन था।
1: अरे ये तो गोल्ड मेडल के ही दावेदार थे, ये सिर्फ कह सकते हैं कि लक की वजह से गोल्ड मेडल नहीं जीत सके। जो वो जंप था 2.25 मीटर का, इनके जो कंपटीटर थे उन्होंने भी उतना ही जंप लगाया और गोल्ड मेडल जीता। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने पहली बार में ही वो डिस्टेंस क्लियर कर लिया था और सर्वेश कुशारे जो है वो दूसरी बार में वो हाइट क्लियर कर सके, इसकी वजह से गोल्ड मेडल से चूक गए।
0: बिल्कुल, और इसके साथ ही यहाँ पर बात करनी होगी पारुल चौधरी की, जिन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में उन्होंने आज कांस्य पदक देश को दिलाया।
1: जी, पारुल चौधरी ने भी कमाल की दौड़ लगाई। लगातार वो जो तीन खिलाड़ी थी एक लय में बनी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि कोई भी वो रेस जीत सकता है। हालांकि अंत में पारुल चौधरी थोड़ा सा सुस्त हुई और वो गोल्ड से चूक गई, कांस्य पदक पर जरूर उन्होंने कब्जा किया।
0: जी, और डेकाथ्लॉन में भी जिस तरह का तेजस्विन शंकर ने आज प्रदर्शन किया है वो भी काबिले तारीफ है।
1: तेजस्विन शंकर की अगर हम बात करें तो कल तक का उनका प्रदर्शन काफी बेहतरीन था, नंबर वन चल रहे थे। आज जो इवेंट्स उन्होंने किए उनमें वो उस तरह का प्रदर्शन कंटिन्यू नहीं कर सके जिसकी वजह से वो ब्रॉन्ज मेडल पर फिसल गए, अन्यथा कल तक ऐसा लग रहा था कि वो स्वर्ण पदक एक और भारत को दिलाएंगे।
0: बिल्कुल, और हरिता भद्र ने भी काफी सुर्खियां बटोरी जिस तरह से 200 मीटर दौड़ में जो उन्होंने 23.20 सेकंड का समय लेकर कांस्य पदक अपने देश के नाम किया, उनका भी प्रदर्शन काफी अच्छा।
1: बहुत तारीफ के काबिल है। आपने बताया भी कि दुती चंद के बाद उन्होंने एक मेडल दिलाया है भारत को। 200 मीटर की दौड़ इतनी आसान होती नहीं और ये हमारा पारंपरिक इवेंट रहा भी नहीं है, तो हरिता भद्रा ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है बहुत सारी उम्मीदें वो भी जगा कर गई हैं।
0: एशियाई खेल में आज पुरुष और महिला सिंगल्स स्क्वैश के फाइनल में अनहस सिंह और अभय सिंह ने रजत पदक हासिल किया। ये सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: वर्षीय अनहत सिंह स्क्वाश में भारत की पहली वुमेन सिंगल सिल्वर मेडलिस्ट बन गई है।
3: I'm quite happy with the silver medal. It's my second time playing the individuals and I'm just getting to learn from this and be at this stage is something that's very exciting for every athlete and also getting a medal on top of that is something I'm quite happy about.
2: हालांकि अनहत को फाइनल में मलेशिया की मौजूदा चैंपियन शिव संगरी सुब्रमण्यम के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ अनहत ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करने का पहला मौका भी चूक गई, क्योंकि सिंगल्स इवेंट के विजेता को 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए कोटा मिलना तय था जहां स्क्वाश पहली बार शामिल हो रहा है। इससे पहले अभय सिंह ने पुरुष सिंगल्स का रजत पदक देश के नाम किया।
4: Quite disappointed. I wanted to go all the way, but sport doesn't work that way. So I think I played pretty well in the first. I think we were quite toe to toe. But I think he started playing better squash in the second. He found the ball. He put the ball in very good areas. Very clean squash. Moved well. Like I said, all credit to him. I think he was a better athlete today.
2: फाइनल मुकाबले में अभय सिंह को मलेशिया के मौजूदा चैंपियन एनियो एनजी ने मात दी। ये स्क्वाश में भारत का दूसरा पदक रहा। अभय सौरव घोषाल के बाद इस इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने। अनहत सिंह और अभय सिंह की ऐतिहासिक जीत ने देश को गौरवान्वित किया है। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।

0: एशियाई खेलों में बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल और परवीन हुड्डा ने क्वार्टर फाइनल जीतकर भारत के लिए दो और पदक पक्के कर दिए हैं। अंकुश ने पुरुष 80 किलोग्राम में ताजिकिस्तान के नेक्रूस सलीमोव और परवीन ने महिला 65 किलोग्राम में उज्बेकिस्तान की नवाबहूर खामिदोवा को 5-0 से हराया, लेकिन सचिन सिवाच पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में हार कर बाहर हो गए।
1: और सिद्धार्थ, आपको तो पता है कि तीरंदाजी हमारा पारंपरिक खेल रहा है, हमारे धनुर्धर महाभारत काल से ही कमाल करते रहे हैं और आज भी तीरंदाजी में भारत की पुरुष रिकर्व टीम ने और पूरी टीम की अगर बात करें तो कमाल का प्रदर्शन किया। क्वार्टर फाइनल में पुरुष टीम ने चीन को 5-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। महिला टीम ने चीनी ताइपे को 6-0 से हराया। इसके साथ ही भारत की पुरुष, महिला और मिक्स रिकर्व टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई। ये मुकाबले 2 अक्टूबर को खेले जाएंगे। कल से कंपाउंड के व्यक्तिगत मुकाबले शुरू होंगे और वहां भी हमें बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है।
0: आगे बढ़ते हैं। भारत के संतोष कुमार तमिलारासन ने पुरुषों की 400 मीटर हर्डल्स की हीट में 49.61 सेकंड का समय लेकर दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। यशस पाराक्षा दूसरी हीट में चोटिल हो गए और वे रेस पूरी नहीं कर सके।
1: और भारत के संतोष कुमार तमिलारासन ने पुरुषों की 400 मीटर हर्डल्स की हीट में 49.61 सेकंड का समय लेकर जो आपने बताया कि दूसरा स्थान हासिल किया। उधर महिलाओं की मैराथन रेस वॉक में भारत की मंजूरानी 3 घंटे 40 मिनट 1.07 सेकंड के समय के साथ छठे और आखिरी स्थान पर रही। प्रियंका गोस्वामी करीब 9 किलोमीटर के बाद डिस्क्वालिफाई हो गई थी।
0: बिल्कुल, आप सबकी नजर हॉकी पर रहती है तो बता दें कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने सुनीलिता टोपो के 2 गोल की मदद से अपने अंतिम पूल बी मैच में सिंगापुर को 7-0 से हराया। भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है जहां 3 सितंबर को उसका मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा।
1: पुरुष वॉलीबॉल के पूल सी मुकाबले में भारत ने वियतनाम को 3-0 से हराया। भारत ने यह मैच 25-23, 25-21, 25-20 से जीता। भारत अब कल हांगकांग के खिलाफ अपना अगला मुकाबला खेलेगा।
0: वेट लिफ्टिंग में हरजिंदर कौर महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग में 9वें नंबर पर रही। उन्होंने कुल 204 किलोग्राम वजन उठाया।
1: बैडमिंटन में भारत का सफर समाप्त हो गया। पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में चीन की चेन यूफेई से हार गई। उन्नति हुडा क्वार्टर फाइनल में चीन की अकाने यामागुची से पराजित हो गई। मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में तनिषा कास्टो और ध्रुव कपिला को चीन की जोड़ी ने पराजित किया। महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में गायत्री गोपीचंद त्रिशा जोली को मलेशिया की जोड़ी ने हराया। बैडमिंटन में इस बार भारत को सिर्फ पुरुष टीम इवेंट में कांस्य पदक मिला।
0: शूटिंग की बात करें तो महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन के प्रिसीजन स्टेज में भारत की ईशा सिंह ने 290 अंक हासिल किए। मनु भाकर और राही सरोनबत ने भी 287 अंक लिए। इस इवेंट में अभी किसी की स्थिति फिलहाल तय नहीं हुई है और इवेंट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन फिलहाल समय कुछ कम है।
1: लेकिन हम तो बात करेंगे, रैपिड स्टेज कल से खेला जाएगा। फाइनल में जगह बनाने के लिए भारतीय निशानेबाजों को रैपिड स्टेज में बेहतर स्कोर करना होगा। और पुरुष वर्ग में काइनन चेनाई 47 अंक के साथ 11वें स्थान पर हैं। शपथ भारद्वाज 45 अंक के साथ 22वें और अहवर रिजवी 41 अंक के साथ 35वें स्थान पर हैं। घुड़सवारी के डिसाज इंडिविजुअल फाइनल में हृदय छेड़ा 8वें और जयसूद 9वें स्थान पर रहे।
0: समरकंद में भारतीय पुरुष टीम ने 46वें शतरंज ओलंपियाड के अंतिम दौर में रविवार को हंगरी के साथ ड्रॉ खेलकर यानी आज ट्राई ब्रेकर में रजत पदक हासिल किया। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ बाजी

0: बराबर रहने के बाद कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: ओपन सेक्शन में उज्बेकिस्तान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है और भारत को रजत पदक और जर्मनी को कांस्य पदक मिलेगा। महिलाओं के सेक्शन में चाइना को स्वर्ण पदक और रजत पदक कजाकिस्तान का होगा, जिनकी टीम काफी अच्छी है, बिबिसारा उनके खिलाड़ी है, और भारत की महिलाओं को कांस्य पदक मिलेगा। अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में सोचते हैं तो सविता श्री को स्वर्ण पदक मिलेगा। आज का जो गेम था वो काफी मुश्किल पोजीशन में थी, अगर वो हार जाती तो भारत को तृतीय स्थान नहीं मिलता, फिर वो यूएसए को मिल जाता और भारत चौथे स्थान पे आ जाता, लेकिन सविता श्री ने बहुत ही अच्छी एक टक्कर दी तो सविता श्री को इंडिविजुअल गोल्ड मिलेगा। तो वर्ल्ड चैंपियन गुकेश जो आज अनफॉर्चुनेटली हार गए तो उन्हें सिल्वर मिलेगा। दिव्या देशमुख वो भी आज पराजित हो गई, उसको सिल्वर मेडल मिलेगा। ऑल टाइम ग्रेट कोनेरू होम्पी को ब्रॉन्ज मिल रहा है, वंतिका अग्रवाल को ब्रॉन्ज मिल रहा है और प्रज्ञानंद को ब्रॉन्ज मिल रहा है। तो हमें 6 इंडिविजुअल मेडल्स मिल रहे हैं और कहीं इसका रिफ्लेक्शन हमें अपने टीम के सक्सेस में दिखाई दे रहा है।
0: जी हाँ, भारतीय टीम और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में बता रहे थे शतरंज ग्रैंड मास्टर नाम प्राप्त करने वाले और राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी प्रवीण थिप्से।
2: और क्रिकेट में तिरुवनंतपुरम में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं।
0: और श्रोताओं, घड़ी की सुइयां कह रही कि अब आपसे विदा लिया जाए, कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। खेल के मैदान की हर खबर के साथ आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर आप हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। कहा, ये आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौते किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। एशियाई खेलों में भारत ने वुमेन्स लॉन्ग जंप, मेंस हाई जंप और स्क्वाश सिंगल्स स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथनॉल, वुमेन्स स्टेपल चेज और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नूना ग्रैम्पेडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की ये कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: श्री मोदी ने लोगों से मेढोरा की गौरवशाली विरासत को देखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद के संबंध में कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। यहां के किसान पीढ़ियों से आंवले की खेती करते आ रहे हैं। विंध्यवासिनी स्व सहायता समूह की महिलाएं आंवले से अचार और पाचक चूर्ण बना रही हैं। इन महिलाओं को प्रसंस्करण और ऋण की सुविधा मिली है। श्री मोदी ने त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल मंत्र को याद रखने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ साथ साइबर, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना युद्ध जैसे क्षेत्रों से परे भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI टेक्नीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 20 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेल

0: गाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और एलएनजी दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृह मंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री शाह ने कहा कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी है।
1: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7188 किलोमीटर विद्युतीकरण। 75 से 7000 किलोमीटर की छलांग 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है। 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
1: अशोक जी का जीवन कई सारे किशोरों के लिए, युवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। उनके जीवन का सत्व, उनका तप, उनकी सादगी और उनका पुरुषार्थ हर युवा के लिए अनुकरण करने योग्य गुण है और स्वाभाविक रूप से उनका स्मरण हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि तकनीक किसी चिकित्सक के मानवीय स्पर्श और नैतिक जिम्मेदारी का स्थान नहीं ले सकती। श्री राधाकृष्णन आज तिरुवनंतपुरम में SUT एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
2: As we embrace technology, we must remember that one fundamental truth. Technology can assist a doctor, but it cannot replace the human touch of a doctor. A machine can analyze, a robot can assist, but there is no comparison that human touch by a doctor to the patient. An algorithm can identify patterns, but patient still needs a doctor who can listen, understand, reassure, and take the responsibility.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं नमो भारत रैपिड रेल की कि कैसे इस संकल्प को वास्तविकता में बदला गया।
3: नमो भारत भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। यह 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। 30,274 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर पर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। यह सेवा इस साल फरवरी से शुरू हुई और इसके कारण दिल्ली से मेरठ के सफर का समय घटकर 1 घंटे से भी कम हो गया है। रैपिड रेल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नमो भारत ट्रेन आधुनिकता, तेजी और शानदार रफ्तार को दर्शाती है।
4: ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
3: नमो भारत में यात्रा करने वाले एक यात्री ने बताया,
5: जो लोग पहले गाड़ी से जाते थे या फिर कार बस से जाते थे, उनको ना कार में जाने की झंझट है कि ट्रैफिक जाम आपको पीक टाइम मिलता ही मिलता है। किसी भी एम्प्लॉय से आप पूछोगे कि जो काम करता है बाहर, आई डोंट थिंक कि वो डिसएग्री करेगा इस चीज से कि नमो भारत रैपिड रेल की चेंजर है, एक डेवलपमेंट है मेरठ और यूपी के।
3: नमो भारत का अलग अलग परिवहन साधनों के साथ सहज जुड़ाव भारत में तेज इंटरसिटी यात्रा को सुनिश्चित करता है और एकीकृत शहरी तथा क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह परियोजना प्रधानमंत्री के उस विजन को और गति देती है जिसमें शहरी परिवहन को बदलने और नागरिकों के लिए सुगम, कुशल, आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। भानु प्रताप के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अब रुक खेल खबरों का। एशियाई खेलों के हलचल के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
6: एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत

0: और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्वी शंकर ने डेकथलॉन में 7934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक देश के नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उधर भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नाना ग्रैम्पेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी है। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर कांस्य पदक देश को दिलाया। तिरुवनंतपुरम में 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 34 ओवर में 2 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैम्पेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says surgical strikes, Balakot airstrike and Operation Sindoor are bold examples of India's zero tolerance policy towards terrorism. In Mann Ki Baat program, Prime Minister highlights progress of Census 2027, saying data of over 32 crore families recorded so far, also calls for greater public participation in cleanliness drives ahead of Mahatma Gandhi's birth anniversary. Defence Minister Rajnath Singh asserts India seeks global stability without compromising strategic autonomy. Union Minister Amit Shah flags off country's first LNG-powered train from Sabarmati in Gujarat, marking railway shift towards cleaner energy. At Asian Games, India claims silver medals in women's long jump, men's high jump and both squash singles, bats bronze in decathlon, women's steeplechase and 200 meter events, and India retained Nona Gaprina Dashavile trophy at Chess Olympiad in Uzbekistan, wins silver in open section and bronze in the women's event. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. The Prime Minister was addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani today. He said the surgical strikes carried out by the Indian Army on terrorist hideouts in Pakistan in 2016 demonstrated to the world a new approach to India's counter-terrorism policy. Mr. Modi said India will mark the 10th anniversary of the cross-border surgical strike tomorrow.
3: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी थी प्यारेलाल।
1: तो देखिए उसका अंतर है दारा दारा। अब ये क्या उल्टी ही हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दारा तारा दारा तारा। सब खास उठा था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों ने भी नहीं पा और लोगों खास किया।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

आप सोच रहे होंगे, नमस्कार के साथ ही मैंने अर्ज किया कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, ये मामला क्या है? तो चलिए मामले को थोड़ा आगे और फलसफाई बना देते हैं।

मानना क्या है? आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम आखिर बात किस सिनेकार की कर रहे हैं? आज के फनकार कार्यक्रम में आज नमन जाने माने निर्माता निर्देशक यशराज चोपड़ा को।

0: Der Harze hat Turma, der sein Brot Oma, der verlangte Pyrotechna, nahi maf pranama, jubta kajan.
1: Yashraj Chopra, 27 सितंबर 1932 को लाहौर में जन्मे यश चोपड़ा के पिता एक सरकारी विभाग में काम करते थे। परिवार में 8 भाई बहन थे। जब से उन्होंने होश संभाला, उन्होंने सिनेमा में ही सांस ली, सिनेमा में ही काम किया और सिनेमा के ही सपने देखे, और वो सपने भी बड़े रूमानी किस्म के सपने थे। तभी तो आगे चलकर यशराज चोपड़ा ने अपने सिनेमा का एक खास मुहावरा कढ़ा। जब ये पता चलता था कि यश चोपड़ा की नई फिल्म आ रही है, लोग अंदाजा लगा लेते थे कि मोहब्बत का कोई रंग लेकर आ रही होगी। यश चोपड़ा ने बिल्कुल शुरुआत में ही ये समझ लिया था कि मोहब्बत सचमुच बड़े काम की चीज है, और ये नाम ही नाम की चीज नहीं बल्कि नाम और दाम की चीज है। तभी तो यश चोपड़ा ने सेलुलॉइड पर रूमानी सपनों को उतारा और कामयाबी की नई इबारत रची। लेकिन इसके लिए यश चोपड़ा को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, और यश चोपड़ा के बड़े भाई बलदेव राज चोपड़ा शुरुआती दौर में तो एक फिल्म पत्रकार थे, लेकिन धीरे धीरे उनका करियर फिल्म पत्रकारिता से फिल्मों में जा पहुंचा। वो फिल्मों की दुनिया के एक बड़े नाम बन गए। यश चोपड़ा पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने ये सोचा था कि वो इंजीनियरिंग करेंगे, लेकिन बीच में ही उन्हें लग गया सिनेमा का चस्का और वो आ पहुंचे अपने बड़े भाई बलदेव राज चोपड़ा के पास समंदर किनारे बसे शहर मुंबई में।

यश चोपड़ा, जाने माने कॉमेडियन और निर्माता निर्देशक इंद्रसेन जोहर, जिन्हें आप आईएस जौहर के नाम से जानते हैं, उनके असिस्टेंट रहे। इसके बाद अपने बड़े भाई के सानिध्य में उन्होंने सीखा सिनेमा रचने का हुनर। सन 1959 आ गया और यश चोपड़ा को मिली उनकी पहली फिल्म धूल का फूल। इसे यश चोपड़ा के बड़े भाई बी आर चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था। माला सिन्हा, राजेंद्र कुमार और लीला चिटनीस के अभिनय वाली इस फिल्म का बड़ी सूझबूझ से निर्देशन किया यश चोपड़ा ने।

नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसाफ जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा, मुसलमान बनेगा।

ऐलान बनेगा इंसान की औलाद है इंसान बनेगा हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा इंसान की

जैसे कि आप जानते हैं, वी आर चोपड़ा का प्रोडक्शन हाउस बी आर फिल्म्स सामाजिक मुद्दों पर बनी अपनी फिल्मों के लिए जाना जाता है। जाहिर है कि शुरुआती दौर में वी आर चोपड़ा प्रोडक्शंस के बैनर तले यश चोपड़ा ने जिन फिल्मों का निर्देशन किया, उनमें कोई ना कोई सामाजिक मुद्दा था, कोई ना कोई बात थी जिसका ताल्लुक समाज से था, समाज की धड़कती हुई नसों से था। सन 1961 में बी आर चोपड़ा के प्रोडक्शन में यश चोपड़ा ने डायरेक्शन किया फिल्म धर्म।

साहिब लुधियानवी का लिखा ये गाना अपने आप जाहिर कर देता है कि फिल्म धर्मपुत्र का मुद्दा आखिर क्या था। फिल्म धर्मपुत्र को भारत सरकार ने हिंदी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। ये वो दौर था जब BR फिल्म्स के बैनर तले यश चोपड़ा एक के बाद एक कामयाब फिल्में बना रहे थे। सन 1965 यानी धर्मपुत्र के रिलीज होने के 4 साल बाद यश चोपड़ा लेकर आए अपनी एक अजीमशान फिल्म जिसके सितारे थे सुनील दत्त, राजकुमार, शशि कपूर, साधना, बलराज साहनी, मदनपुरी, शर्मिला टैगोर, अचला सचदेव और रहमान। ये फिल्म

0: तुझ पे कुर्बान लगी जान मेरी जान।
1: अपनी बेहतरीन स्क्रिप्ट और शानदार डायरेक्शन के लिए फिल्म वक्त को आज भी एक कल्ट फिल्म माना जाता है। आप जितनी बार भी वक्त को देख लें, आपका मन नहीं भरता। इस फिल्म के लिए यश चोपड़ा को मिला था सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार। हिंदी सिनेमा में कुछ किरदारों के खो जाने और उसके बाद नाटकीय तरीके से उनके मिलने की बेमिसाल कहानी थी वक्त। सन 1969 में बीआर चोपड़ा प्रोडक्शंस के बैनर तले यश चोपड़ा ने बनाई दो बेमिसाल फिल्में। एक थी आदमी और इंसान।

दूसरी थी फिल्म इत्तेफाक। आपको बता दें कि फिल्म इत्तेफाक एक रात की कहानी थी। ये एक गुजराती नाटक पर आधारित फिल्म थी जिसके मुख्य सितारे थे राजेश खन्ना। बहुत कम बजट में बनी इस फिल्म ने आलोचकों का दिल जीत लिया। इत्तेफाक की कमाल की बात यह है कि इसकी शूटिंग सिर्फ एक महीने में पूरी हो गई थी। इस फिल्म में ना तो कोई गाना था और ना ही इंटरवल था। हिंदी सिनेमा के लिए ये बिल्कुल नई बात थी। फिल्म को दर्शकों और

0: चुपड़े खूब सराहा और इस फिल्म के लिए भी यश चोपड़ा को मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार। यहां से यश चोपड़ा के जीवन का एक नया युग शुरू होता है। सन 1971 यश चोपड़ा ने अपने बड़े भाई बीआर चोपड़ा के प्रोडक्शन बीआर फिल्म्स को अलविदा कह दिया और अपना एक नया रास्ता बनाना शुरू किया। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया जिसका नाम रखा गया यशराज फिल्म्स। यशराज फिल्म्स ने सबसे पहले बनाई फिल्म दाग। साल 1973 में आई राजेश खन्ना के अभिनय वाली ये फिल्म जबरदस्त कामयाब रही और यशराज फिल्म्स की कामयाबी की कहानी यहां से शुरू हुई। फिल्म दाग की कामयाबी के बाद यश चोपड़ा ने अपने मजबूत कदमों के साथ फिल्म संसार में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। सन 1975 रजत पट पर एक इतिहास लिखा गया। सलीम जावेद की लिखी यश चोपड़ा की निर्देशित अमिताभ बच्चन और शशि कपूर अभिनीत फिल्म आई दीवार।
1: लगता है वो दीवार जो हम दोनों के बीच है वो इस पुल से कहीं ऊंची है। रवि, तुम नहीं जानते तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसका अंजाम क्या हो सकता है।
2: जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उसका अंजाम शायद बुरा भी हो सकता है,
1: लेकिन जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका अंजाम सिर्फ बुरा ही होता है भाई। रवि, मैं तो अपनी बाजी खेल चुका हूँ।

0: मेरे असूल, मेरे आदर्श मुझे इसकी इजाजत नहीं देते हैं।
1: तुम्हारे असूल, तुम्हारे आदर्श, किस काम के तुम्हारे असूल? तुम्हारे सारे असूलों को गूंथ कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती रवि। जिन आदर्शों के लिए तुम अपनी जिंदगी पर खेलने के लिए तैयार हो, क्या दिया उन आदर्शों ने? एक 400-500 रुपए की पुलिस की नौकरी, एक किराए का क्वार्टर, एक ड्यूटी की जीप, दो जोड़ी खाकी वर्दी। देखो देखो, ये वही मैं हूं और ये वही तुम हो। हम दोनों एक साथ इस पर 500 देते हैं, लेकिन आज तुम कहा गए और मैं कहा गया। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास?
0: मेरे पास ना है।
2: दीवार बेहद कामयाब रही। अपनी बेमिसाल स्क्रिप्ट और कसे हुए निर्देशन की वजह से फिल्म दीवार आज भी याद की जाती है। यश चोपड़ा की बेमिसाल फिल्मों का सिलसिला यहां रुका नहीं, बल्कि इसके अगले ही साल वो लेकर आए अपनी एक और लाजवाब फिल्म कभी कभी। ये यश चोपड़ा के करियर का सबसे सुनहरा दौर था। कभी कभी के 2 साल बाद ही उन्होंने गुलशन राय के लिए एक फिल्म का निर्देशन किया। अमिताभ बच्चन के अभिनय से सजी ये फिल्म थी त्रिशूल। यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन के साथ का सिलसिला जारी रहा। सन 1981 में आई फिल्म सिलसिला।
0: ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फे खुली हुई है, है चांदनी, ये तुम्हारी नजरों से मेरी रातें ढुली हुई है। ये चांद है, ये तुम्हारा कंगन, सितारे हैं, ये तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है, ये तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गम सुनू कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल की कह रहा है।

के बारीक यश चोपड़ा ने लगातार कई कामयाब फिल्में दी। सन 1984 में दिलीप कुमार, वहीदा रहमान और अनिल कपूर के अभिनय वाली फिल्म आई मशाल। इसके बाद यशराज फिल्म्स की कामयाबी का सफर थोड़ा सा ढीला पड़ गया। यश चोपड़ा की कुछ फिल्में कामयाब नहीं रही, जैसे फासले, विजय और परंपरा। सन 1989 में यश चोपड़ा लेकर आए फिल्म चांदनी। ऐसा लगा जैसे पर्दे पर यश चोपड़ा का जादू अभी कई सालों तक कायम रहने वाला है। फिल्म चांदनी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। सन 1991 में एक विवादास्पद विषय पर यश चोपड़ा ने बनाई फिल्म लम्हे। लम्हे को आलोचकों ने खूब सराहा, लेकिन ये फिल्म उतनी कामयाब नहीं रही जितनी यश चोपड़ा ने उम्मीद की थी। हालांकि फिल्म ने 5 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल था। सन 1993 में यश चोपड़ा ने बनाई शाहरुख खान, जूही चावला म्यूजिकल थ्रिलर डर। साल 1995 यशराज फिल्म्स के इतिहास का एक नया पन्ना शुरू हुआ। यश चोपड़ा के सुपुत्र आदित्य चोपड़ा ने एक फिल्म लिखी और उसका निर्देशन किया। शाहरुख खान और काजोल के अभिनय वाली ये फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये फिल्म रिलीज हुई 20 अक्टूबर 1995 को और सारी दुनिया में दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत

इसके बाद यश चोपड़ा लेकर आए फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म ने 7 फिल्म फेयर पुरस्कार और 3 नेशनल अवार्ड जीते। सन 1997 में दिल तो पागल है के रिलीज होने के बाद यश चोपड़ा तकरीबन 7-8 बरस तक फिल्मों से दूर रहे। हालांकि यशराज फिल्म्स ने अपनी फिल्मों के प्रोड्यूस करने का सिलसिला जारी रखा, लेकिन यश चोपड़ा उनका निर्देशन नहीं कर रहे थे। साल 2004 में यश चोपड़ा ने एक बार फिर निर्देशन की बागडोर संभाली और लेकर आए फिल्म वीर जारा। सारी दुनिया में वीर जारा ने तकरीबन 940 मिलियन का कारोबार किया। एक बार फिर तकरीबन 8 बरस तक यश चोपड़ा ने किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। यशराज फिल्म्स की बागडोर उनके पुत्र आदित्य चोपड़ा संभाल रहे थे। नए निर्देशकों को मौका दिया जा रहा था। प्रोडक्शन हाउस की कामयाबी जोरों पर थी। यश चोपड़ा अपने पुत्र के साथ यशराज फिल्म्स को आगे बढ़ा रहे थे। साल 2012 में अपने 80वें जन्मदिन के मौके पर यश चोपड़ा ने अपनी नई फिल्म का ऐलान किया, जिसका नाम था जब तक है जहां, और ये भी कहा कि ये उनके द्वारा निर्देशित की गई आखिरी फिल्म होगी। इसके बाद वो फिल्मों के निर्देशन से संन्यास ले लेंगे। फिल्म जब तक है जहां एक बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन इसी साल 21 अक्टूबर 2012 को डेंगू की चपेट में आकर यश चोपड़ा का निधन हो गया।

इस तरह फिल्म संसार ने खो दिया अपने एक बेमिसाल निर्माता और निर्देशक को, जिसकी फिल्मों को हम कभी भूल नहीं पाएंगे, जिसने रजत पट पर रची मोहब्बत की एक नई परिभाषा, जज्बात की एक नई धड़कन। यश चोपड़ा को

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गालियों का बिछौना, यादों का बोझा, जज्बात की

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बात कही। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृह मंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन

जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये गाना। हम अभी हाजिर हुए।

ये क्यों हवाएं अचानक खुशगवार लग रही हैं? ये क्यों अचानक आसमान के घूंघट से झांकने लगा है चांद? ये क्या हुआ कि अचानक भला लगने लगा है उदासी वाला कोहरा? ये कौन है जिसने आकर बदला है हमारी

गीत में आज ऐसे गाने थे जिनके दो संस्करण हैं। दोनों संस्करणों को हमने किसी मोड़ पर जोड़ दिया था आश्चर्य, कौतूहल और आनंद के लिए। फिल्मों के नाम आपको बता दें।

मेरे महबूब शकील बदायूनी नौशाद। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को।